मंदिर बनाया, सब कुछ किया। हाँ, तो महात्मा के आदेश से बनाया, तो सज्जन मर गया। तो सज्जन मरने के बाद में महात्मा भी मर गया थोड़ा दिन बाद में, क्यों? सबका वेष अलग अलग है, समझना, सबका जन्म का भी वेष अलग अलग है और मरने का भी वेष अलग अलग है। एक वेष आया दूसरा वेष गया, एक वेष गया दूसरा वेष आया। कहते ना, हमारे घर में बाबा आया, बेबी आए, फलाना आया, तुम्हारे जाने की तैयारी करना पड़ेगा, जगह खाली कौन करेगा? तुम जाओगे तब ना जगह खाली होगा उसके रहने का है? तो महात्मा कालांतर में महात्मा भी मिल गया, मर गया। तो महात्मा को ले गया स्वर्ग की तरफ। हाँ, तो महात्मा ने कहा मैं जाऊंगा, पहले हमारा एक जजमान मरा है, बड़ा दाता था, बड़ा पुण्यात्मा था, बड़ा फलाना था, बहुत बावड़ी बनाया, फलाना बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, धर्मशाला बनाया, उसको मेरा देख कर लो चलो स्वर्ग में। बोले नाम क्या है उसका? बोला फलाना। प्लीज, नाम का तो यहाँ स्वर्ग में कोई आया नहीं, क्या कहते हो? इतना दान करने वाला यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? देंगे पता नहीं, जाओ नरक में देखो। तो नरक में गया देखने के लिए, तो वहां देखता पूछता है ये अमुक व्यक्ति आया? बोले हाँ आया तो है। कहाँ है? नरक के अमुक नाम के नरक में जाए। वो कैसे आया यहाँ? इतना दान करने वाला यहाँ आया, इतना परोपकार करने वाला यहाँ आया। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। धर्मराज से पूछा, चित्रगुप्त से पूछा, बोले सब कुछ किया है, बोले उसने हर एक ईंट के साथ अहम को जोड़ रखा है। हर एक ईंट जो है ना, ये ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए उसको जो है ना वो दान किसी काम का, इसीलिए जहां भी सत्कर्म होते हैं सत्क्रिया होती है। अहम भाव को जोड़ो नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। तो पूर्त कर्म में हमेशा अहम भाव जोड़ा रहता है, इष्ट कर्म में तो है, पर इष्ट कर्म करने वाला जो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग कामो जजे, तो वो तो स्वर्ग जाने है तो जजन करेगा। स्वर्ग जाने का है वो जानता है, स्वर्ग जाने वाला समझेंगे नहीं। स्वर्ग जाने वाला जो होते हैं ना, इस मर्त में, इस शरीर में इसकी आसक्ति नहीं होती है, तो स्वर्ग जाने के लिए कर्म करते हैं ना, इसकी आसक्ति नहीं होती। वो जानता मरने के बाद ही हमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, है नहीं बात? इसलिए देहात्मा भाव उसको नहीं रहता है, उसको रहता है जीवात्मा भाव। मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, स्वर्ग नरक आदि में आने जाने वाला जीवात्मा है। तो स्वर्ग में जाने के लिए जो कर्म करेगा वो देह में अहम भाव जोड़ेगा नहीं, तो देह में अहम भाव जोड़ करके कर्म करेगा नहीं। तो किस में करेगा अहम भाव? जीव भाव में, जीव भाव में। क्यों? जीव ही जाएगा स्वर्ग में, नरक में, स्वर्ग में कौन जाता है? जाता तो है, फिर वो देहात्मा भाव वाला कहाँ जाएगा? देह में तो आत्मा भाव किया, उसको तो मुक्ति हुई ना। देव हम, देव हम, देव हम, देव हम। पूर्त कर्म ज्यादा करेगा। देव हम, देव हम, मैं कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कर। इसीलिए गीता के 16वां अध्याय में शायद भगवान, या भगवान ने कहा, देखो आसुरी संपत् इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हत शत्रुर्हनिश्चे चापरा नभीश्वरहम अहम भोगी हिद्वम बलवान सुखी अध्य वजन अध्य अभिजनवानोस्मि कोई नस्ते सदृश मया। यह अहंकार है, जक्षे दश्यामि मदिष्ये सब मैं कर रहा हूं। इत्यज्ञान अभिमहिता एताम दृष्टि अवश्य नष्ट आत्मन अल्प बुद्ध है। ये दृष्टि को लेकर के नष्ट हो गया, समझे नहीं? ऐसा चलिए।
नहीं इति नहीं के पूर्ता स्मार्त कर्म इष्ट श्रोत्रम स कर्म अक्षिफन न पुनर्भोग हेतु बद्धाती उसको नहीं बांधता है कौन किसको नहीं बांधता है पूर्व्याम ब्रह्म निष्ठाम ब्रह्म में जो निष्ठा है उसको नहीं बांधेगा याद रखना तत्र जोनेम कृणवासे तत्र उस ब्रह्म में जिसने निष्ठा किया है समाधि लगाया ध्यान लगाया उसको ये बांधने का नहीं पुनर्भोग हेतु और बदना दे ज्ञान अग्नि न सविशेष दग्धत्व क्यों नहीं बांधेगा क्या हेतु दे रहा है याद रखना कारण क्या है कहते ज्ञानाग्नि न ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि जो है ना इसके सब कर्म को अभी यहाँ सब कर्म से इष्ट कर्म अश्रोत कर्म स्मार्त कर्म पूर्त कर्म इष्ट कर्म दोनों समझना यूं नहीं समझना कि एक कर्म को जला दिया पूर्त कर्म को जला दिया इष्ट कर्म रह गया ऐसा नहीं समझना पूरा इनका अग्नि का काम जलाना है जैसे हवी अग्नि में अग्नि जलाते कि ना हवी डालने के लिए तो तुमने अग्नि जलाया तो अग्नि में तुम उसे कच्चा लकड़ी डालो पक्का लकड़ी डालो आहुति डालो अज्ञ डालो कुछ भी डालो अग्नि का काम है दग्ध करना स्वाहा करना अग्नि स्वाहा कर डालते हो तो डाला तो अग्नि का काम जलाना ये नहीं कच्चा है ये नहीं पक्का है ये नहीं देखेगा ठीक इसी प्रकार कहते हैं ज्ञान रूपी जो अग्नि है तो ज्ञान रूपी अग्नि क्या करेगा सर्वकर्माणि ऐसा नहीं समझना सर्वकर्माणि इसका मतलब होता है तुम्हारा संचित कर्म क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्म आगामी कर्म सब कर्म को नाश करेगा ये नहीं कि अभी प्रारब्ध कर्म तो भोग से नाश हो जाएगा तो तुम सोचते होंगे कि प्रारब्ध कर्म तो भोग से नाश होगा तो हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए ना कर्म नाश हो जाएगा हमने भोग के समाप्त कर लिया कर्म फिर मुक्ति हो जानी चाहिए ना कि तुम्हारे इस कर्म का नहीं अनंत जन्मों का संचित कर्म पड़ा हुआ है एक जन्म का नहीं याद रखना अनंत जन्मों का क्यों जब से सृष्टि कब से है अभी अभी वो उसमें आते हैं ना 5 करोड़ 10 करोड़ पहले का जीविका चिन्ह मिलता है अभी हिस्टोरिकल चैनल में कब 10 करोड़ पहले का ये चिन्ह यह है तो इन लोगों का तो खोज कर रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग तो कहे 5000 बरस हुआ महाभारत हुआ परंतु तो द्वापर हुआ कि नहीं द्वापर फिर त्रेता गया कि नहीं सत्य गया कि नहीं फिर युग का पुनरावृत्ति हुआ कि नहीं हुआ तो जब होगा तो वैज्ञानिक लोग जो खोज कर रहा है इन लोगों को सब पता चल जाता है अवशेष देख करके ये 5 करोड़ वर्ष पहले का प्राणी है 10 करोड़ वर्ष पहले का पानी हम तो 5000 की बात नहीं करते वैज्ञानिक लोग तो खोजते हैं ना देख लेना कभी कभी आप वो चैनल हिस्टोरिकल और एक है दूसरा है डिस्कवरी देख लेना इससे बहुत ज्ञान बढ़ता है हमारे सृष्टि के क्रम में सृष्टि के लिए बहुत कम मरता है अब उस समय वो महाभारत के समय क्या जो है ना वो भगत या पांडव लोग जो है ना वो गया था ना समय चक्का के समय में दिग्विजय करने के लिए तो मणिपुर गया था मणिपुर में मणिपुर राजा के कन्या के साथ अर्जुन की शादी हुई थी ना पूर्व से वहां जो कन्या जो है ना उसके प्रेम करते थे ना अर्जुन से तो शादी किया वो मणिपुर के राजा के उसमें
ये संग्रहालय में कहते वो बब्रू वाहन का तलवार आई हुई है, इतना लंबा थोड़ा करे, चार पांच हाथ लंबा था थोड़ा, और उसका शरीर कितना रहा। सत्या युग के आदमी 21 हाथ लंबा होते थे, त्रेता युग के 14 हाथ हो गया, द्वापर में 7 हाथ हो गया, कलि युग में 3.5 हाथ हो गया। धीरे धीरे आगे और भी कम हो जाएगा, एक बीटा तक आएगा। देखते ना, 52 अवतार तो ठीक है, 52 अवतार भी हमसे बड़ा था, 52 अवतार भी आपसे और हमारे जैसे थे क्या? क्या भे? उसके हाथ के हिसाब से है ना 52 अवतार, आपके हाथ से आप 3.5 हाथ किए है, हमारे हाथ से हम 3.5 हाथ किए है, उनके हाथ से 3.5 हाथ किए। आप एक पंजाबी है, काबुली है, अफगानिस्तानी है, मुसलमान है, इतना लंबे चौड़ा है, उनको तुम 3.5 हाथ से मारो है, तुम्हारे हाथ तो भोड़ेगा भूसा, उनके हाथ से वो 3.5 हाथ है अपने हाथ से है, हमारे हाथ से देखेगा तो उठा कर। एक बार मैं जलंधर में रहा, स्टेशन में खड़ा रहा, गाड़ी पकड़ने के लिए आया, अभी वो 2-4 भैया जो है ना गाड़ी में चढ़ गया, उसमें एक आया पंजाबी जाट, ऐसे उठा करके फेंक दिया, ऐसे फुटबॉल के जैसे सर। मैंने कहा देखा इसके सामने क्या, दरवाजा खाली कर दिया उसने, सबको फेंक करके। मुझे दृश्य अभी तक याद है, समझे कि नहीं। वो जाट आदमी इतना तगड़ा होते हैं वहां के पंजाबी जाट, सीख देखे ना, सीखना तो सरदार कितने सारे, उसका तुम 3.5 से माफ हो गए, 52 अवतार है आप लोग सब। चलिए, चलो आज तो देर से चालू किया है, ज्ञान अग्नि सविशिष्य दग्धत्वा, सविश माने बीज के साथ, बीज का कर्म का बीज क्या है, कर्म बीज वासना, समझे कि नहीं, कर्म बीज वासना, वासना के साथ, अविद्या के साथ, अज्ञान के साथ, हाँ सब कर्म को धारा करके भस्म कर देता। उत्तम स काल करना।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

पृथिवी अन्तरिक्षं च विबाधसे विश्वकर्मात्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यजस्वतीं पृथस्वतीं अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं दृग्ञः अन्तरिक्षं माहि ज्ञासीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय वायुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्याच्छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद राज्ञासि प्राची दिग्विरालासि दक्षिणादिक्सम्रालासि प्रतीची दिक्स्वरालस्युदीची दिगधिपत्न्यसि बृहति दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ वायुष्टेधिपतिस्तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद नभश्च नभ

नव विज्ञशत्यास्तु वतव नस्पतायो सृज्यन्त सोमोधिपतिरासि देकत्रिज्ञशतास्तु वत प्रजा आसृज्यन्त यवाश्चाय वाश्चाधिपतय आसन् त्रयस्त्रिज्ञशत

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: विभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तथा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है, इसमें नौवें श्लोक की व्याख्या है। भोरम मांस नलो नीलोम्बर महर नाथो हिमांसु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उपनिषद की श्रुति है, सर्वं खलविदं ब्रह्मः। उपनिषद के दो विधि हैं, एक तो ये बताना है जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात को लेकर कहते हैं कि सर्वं खलविदं ब्रह्मा इदंते न प्रतीयमान, जो भी पदार्थ हैं वस्तुएं हैं नाम रूप से व्यक्त हुए हुए और जो अव्यक्त हुए हैं इंद्रियों से दिखने वाला प्रत्यक्ष और इंद्रियों से न दिखने वाले परोक्ष शब्दों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है उनको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष या स्थूल या सूक्ष्म, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात या अज्ञात जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं है। अतः सर्वं खलविदं ब्रह्म। दूसरी बात, नेह नानास्ति किंचन, अथा तो आदेश नेति नेति, इंद्रियों से जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो नाम और रूप ये ब्रह्म नहीं है, इनमें सत्यता नहीं है। कई बार विरोधाभासी ये बात सुनते हैं तो भक्तों को बड़ा असंगति लगती है कि कह क्या रहे वेदांत। सर्वं खलविदं ब्रह्म ये वाक्य कहता है कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अथा तो आदेश नेति नेति, ये वाक्य ये कहता है कि यहां तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वो ब्रह्म है ही नहीं, ये बिल्कुल विरोधाभास है। ये किस तरह हम समझें, और विशेष करके ये कह दिया जाता है कि ये जो तुम देख रहे हो नाम रूप ये बिल्कुल मिथ्या है, तो समझ भी नहीं आती कि कैसे मिथ्या, कैसे माने कि ये मिथ्या है। सत्य जो है वो अनुभव में नहीं आ रहा है, और जो अनुभव में आ रहा है उसको मिथ्या कह दिया जा रहा है। ये मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है, वो अनुभव में आना चाहिए, तो वो अनुभव में नहीं आता। तभी ये वेदांत दर्शन एक रहस्य बना रहता है, फिर भी इसके आकर्षण है यथावत आप लोग आ रहे हो, इसके बावजूद भी आप लोग आ रहे हो, किसी न किसी आशा में आ रहे हो, कुछ तो रहस्य खुलेगा। तो हम हमेशा ये दृष्टांत दिया करते हैं, एक गुरु और शिष्य थे, दोनों ही बड़े विचार करते थे, बड़ा वैचारिक थे वो, और दोनों का हमेशा वेदांत में ही विचार करते थे, उपनिषद के आधार पर वेदांत दर्शन के बारे में ही विचार करते, जगत के बारे में विचार करते भी थे तो जगत की हेयता के लिए विचार करते थे। एक दिन की बात है कि दोनों गुरु चले कहीं गए खाना खाने। हम हमेशा समझाया करते हैं आप लोगों को ये बात। तो खाना खा के आ रहे थे, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कुछ विचार किया जाए। तो करो विचार। तो कहां से विचार शुरू करें? बोले सामने एक पीपल का पेड़ खड़ा था, उसी पर विचार करते हैं गुरुदेव। ये जो सामने खड़ा है ये क्या है, इसका निर्णय होना चाहिए। इतना बड़ा सा खड़ा है ये। गुरुजी ने कहा कि इसका नाम है पीपल का पेड़। नाम क्या है? पीपल का पेड़। संस्कृत में उसी को अश्वत्थ कहा है। अच्छा गुरुदेव ये बताइए कि ये पीपल का पेड़ का स्वरूप क्या है। वास्तव में ये पीपल के पेड़ के जो सामने खड़ा है इसका अस्तित्व क्या है, स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तेरे को आंख से जो दिखाई पड़ रहा है वो पीपल का पेड़ हरा और इतना बड़ा, और जिसको नाम हमने दिया है कि ये पीपल है, नाम और ये रूप, बेटा ये सब मिथ्या है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी कैसी बात कर रहे, इतना बड़ा दिख रहा है सामने और आप कहते हो कि मिथ्या है। हां बेटा ये दिख रहा है फिर भी ये मिथ्या है। दिखता हुआ अनुभव में आता हुआ कैसे मिथ्या माने हम इसको? तो गुरु ने समझाया, बेटा कई बार दिखता हुआ भी मिथ्या हो जाता है। दिखता तो है मरुभूमि में जल, लेकिन क्या जल की उपलब्धि होती है? दिखता तो है सीपी में चांदी, क्या चांदी की उपलब्धि होती है? रेल के पटरी में खड़े होकर, बीच में खड़े होकर दूर देखो तो दिखता क्या है कि बिल्कुल आगे जाकर ये पटरियां छोटी हो गई और दोनों आपस में मिल रहे हैं। क्या वो छोटी हो जाती है रेल की पटरी आगे जाकर, संकरी हो जाता है? जहां वो खड़ा है वहां जितनी दूरी है, जहां तक उसकी आंख पहुंची है वहां तक भी उतनी ही समानांतर दूरी में वो रेल की पटरियां हैं, लेकिन दिखती क्या है? जहां मैं खड़ा हूं यहां काफी दूर खड़े हैं पटरी आपस में और आगे जाकर ये जुड़ गए। दिखता तो है, क्या ऐसे ही होते हैं? दिखता तो चंद्रमा तुम्हारी थाली के बराबर है, क्या वास्तव में चंद्रमा तुम्हारी थाली की जितना ही है? उसका आकार के थाली के बराबर ही है, है? अरे भाई दिखता क्या है, होता क्या, इस पर विचार करो। है क्या चीज जो दिख रहा है? स्वप्न में भी सब पदार्थ दिखते हैं, क्या वो सत्य होते हैं? रस्सी में सर्प दिखता है, क्या सत्य होता है? ट्रेन में बैठा हुआ यात्री को दिखता है सारे पेड़ दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं बाहर के, क्या वो सत्य होता है? दौड़ते हैं वो पेड़ मकान। बच्चा चक्कर लगाता है घूमता है और उसके बाद खड़े होता है तो सारा संसार सृष्टि घूम जाती है, उसको दिखता है सब घूम रहे हैं, क्या सत्य होते हैं वो सब? कई उदाहरणों से गुरु ने समझाया कि बेटा दिखता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सब मिथ्या है। ये दृष्टम तन्नष्टम, मिथ्या शब्द का अर्थ ही होता है स्व अधिष्ठान बाद मानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जहां जो वस्तु जिस रूप में दिख रहा है वही वो वस्तु उस रूप में उपलब्ध न होवे उसका नाम है मिथ्या। ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व, ज्ञान के द्वारा यदि वो बाधित होता है तो उसका नाम मिथ्या है। इसलिए बेटा निश्चय कर लो, ये सारी प्रक्रियाओं के आधार पर ये जो सामने खड़ा हुआ पीपल का पेड़ दिखता तो है लेकिन ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। निश्चय कर लिया शिष्य ने, इतने में थोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे, उधर से एक हाथी आ रहा था। हम सुनाते हैं ये दृष्टांत, हमेशा सुनाया है। सामने से एक हाथी आ रहा था, उस हाथी के ऊपर एक महावत बैठा हुआ था। इतने में शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुदेव ये सामने क्या है, बड़ा सा है, चलता फिरता आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये हाथी है, इसको हाथी बोलते हैं, पृथ्वी में सबसे बड़ा जानवर है, जीव है, ये हाथी है। अच्छा, इसको हाथी बोलते हैं, बताइए गुरुदेव इसका स्वरूप क्या है, ये हाथी के बारे में जो कहा इसका स्वरूप क्या है, सत्य है कि मिथ्या है, कि इसको क्या निश्चय किया जाए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये हाथी भी पीपल के पेड़ की तरह ही मिथ्या है, दिख रहा है, दिखता हुआ वस्तु मिथ्या होता है। बोले ये हाथी चलता हुआ आ रहा है फिर भी इसको मिथ्या कह रहे महाराज। बोले तुमको दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो मिथ्या है वो, क्योंकि हाथी ये नाम, मोटा सा ये शरीर रूप, ये कब तक रहेगा, वो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, हाथी की आयु लंबी मानते हैं वो तो, कितने आखिर कभी न कभी ये आकार और ये नाम दोनों नष्ट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं कुछ दिन के बाद। आज तुमको मिल रहा है, कल तुम्हारे बेटे को न मिले, तुम्हारे नाती को न मिले, पोतों को न मिले, तुम्हें जिस रूप में मिला है उसी रूप में मिलेगा उन सबको। सत्य तो उसको कहते हैं कि त्रिकालावादित्वम, तीनों काल में जिसका भाग न हो उसको सत्य बोलते हैं। यदि एक ही किसी समय में दिखे, किसी समय न दिखे, किसी समय मिले, किसी अन्य समय में न मिले, किसी देश में मिले, किसी और देश में न मिले, किसी काल में मिले, किसी और काल में न मिले, उसको मिथ्या कहते हैं बेटा, निश्चय कर लो यह अति मिथ्या है। शिष्य ने कहा कि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि मिथ्या है, मेरा मन तो नहीं मान रहा है, आप लोगों का मन मान रहा है, इतने दिन से वेदांत तो सुनते हुए है, मान रहा है तो ठीक है भाई। हाँ, तुम्हारी पत्नी मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारा पति मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारा बेटा मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारी बेटी मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारे पहना हुआ कपड़ा मिथ्या है कि सत्य है, तुम जिस समय भूख लगता है और सामने थाली होती है भोजन की, वो मिथ्या है कि सत्य है, समझ में नहीं आएगी, मान लो। और दूसरी बात है, समझ में नहीं आएगी। उसने कहा गुरुदेव आप कहते हो तो हम मान लेते हैं, क्योंकि गुरु की वाक्य है, मानना ही चाहिए। इतने में वह शिष्य उसका निश्चय कर रहा था, मान ही रहा था कि हाथी मिथ्या है, पीपल का पेड़ भी मिथ्या है, हाथी भी मिथ्या है। इतने में वह महावत हाथी नजदीक आ चुका था और महावत ने जोर से कहा, ए महात्माओ रास्ता छोड़ो, हट जाओ रास्ते से, क्योंकि यह हाथी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, थोड़ा सा उन्मत्त भी हुआ है, और हम हालांकि कोशिश कर रहे हैं इसको नियंत्रण करने का, लेकिन हो सकता है सामने आ जाओ तुम और ये उठा के पटक के फेंक देवे, अनर्थ हो जाए, हट जाओ रास्ता छोड़ो। गुरु ने कहा कि बेटा ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, यह हाथी थोड़ा सा उन्मत्त है, हटने के लिए कह रहा है महावत, चलो रास्ता छोड़कर उतरते हैं रास्ते से नीचे। शिष्य कहने लगा गुरुजी क्या बात करते हो, अभी अभी निश्चय कर दिया कि यह मिथ्या है, आपने ही निश्चय किया है कि यह मिथ्या है, अब अभी कहते हो कि यह हमको मार डालेगा, छोड़ के रास्ता छोड़ के हट के निकल जाओ कह रहे हो, कि मिथ्या वस्तु हमारा क्या बिगाड़ेगा है। यदि यह हाथी बिल्कुल मिथ्या है तो सामने आ भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, मिथ्या वस्तु किसका क्या बिगाड़ सकता है भैया, बिगाड़ सकता है। फिर गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ के निकल जाओ, हट जाओ, नहीं तो ये बड़ा नुकसान कर देगा, मार डालेगा, उठा के पटक डालेगा। तो शिष्य को समझ में नहीं आ रही है, गुरुजी कह रहे हैं कि निकलो, शिष्य कह रहा है कि क्यों निकले महाराज, जब मिथ्या निश्चय हो गया है तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, स्वप्न मिथ्या है तो स्वप्न का भाग हमारा क्या बिगाड़ेगा भाई, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में आया हुआ बाड़ी पूर हमारा क्या बिगाड़ेगा, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में आग लग जाता है तो हमारा क्या बिगड़ता है, मिथ्या वस्तु किसका क्या बिगाड़ सकता है, हाथी हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम क्यों रास्ता हटकर रास्ता छोड़कर झिड़े चलें। शिष्य तो माना नहीं। गुरुजी इतने में हाथी नजदीक आ रहा था, मावत ने कहा कि अरे रास्ता से हट जाओ, तो गुरुजी तो हट गए, नीचे उतर गए। शिष्य तो निश्चिंत है कि मिथ्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, वो पक्का वेदांती हो गया था, वो तुम्हारे जैसे ही पक्का वेदांती हो गया था। इतने में हाथी नजदीक आया और उसको सूंड से पकड़ लिया, लपेट लिया, सूंड से उठाया और पटक दिया। गुरुजी जिधर थे उदय सड़क के नीचे, उसके तो हाथ पांव टूट गए, रोने लगा, गुरुजी मर गया, हाथी ने पटक दिया उठाकर, मर गया मैं तो, मार डाला इस हाथी ने, आपकी वेदांत तो हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी अभी निश्चय किया हुआ ये हाथी मिथ्या है, ये मिथ्या हाथी भी इस तरह उठा के पटक के मार सकता है, हम कैसे समझे आपका वेदांत। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बोलो ये समस्या है कि नहीं। अरे भाई, गुरु जी कहते हैं कि अरे बेटा हमने पहले ही कहा था रास्ता छोड़कर हट जाओ। अरे भाई हाथी मिथ्या है तो हाथी से बचना भी मिथ्या है, रास्ता छोड़कर हटना भी मिथ्या है। मिथ्या वस्तु के साथ सारे के सारे व्यवहार करो, मिथ्यात्वेन व्यवहार करो तो सारा व्यवहार सही हो जाता है। व्यवहार सही होता है, परमार्थ सही नहीं होगा। मिथ्या वस्तुओं के साथ मिथ्या निश्चय पूर्वक मिथ्या ही व्यवहार करोगे तो व्यवहार सही होता है। देखो ये हमारे सही हो गया, मिथ्या हाथी, मिथ्या पागल, मिथ्या सड़क से नीचे जाना, मिथ्या बच गए, और सब काम ठीक हो गया कि नहीं, बोलो। और तू अपने आप को सत्य मानता रहा और हाथी को मिथ्या मानता रहा, तो सत्य और मिथ्या का ही तो फाइट होता है जगत में। आज तक आपके सामने हो क्या रहा, यही हो रहा है। कुछ को मिथ्या मानते हो, कुछ को सत्य मानते हो, सत्य और मिथ्या के बीच में समन्वय नहीं हो पाता है, विरोध हो जाता है, तब फिर बैठकर रोने लग जाते हो, महात्मा ने कहा था ये मिथ्या है और इसका घटना ऐसा हो गया, महात्मा ने कहा था मिथ्या है इसकी घटना इस तरह हो गई, फिर रोने लग जाते हैं। तो मिथ्या प्लस मिथ्या इज इक्वल टू मिथ्या, हम तो ये गणित पढ़ाते हैं भाई, मिथ्या प्लस मिथ्या आजकल टू मिथ्या। रिजल्ट सही आया कि नहीं, बोलो है? रिजल्ट गलत है। 10 नंबर का यदि होगा ये मैथ तो 10 में 10 नंबर मिलेगा कि नहीं है? मिथ्या प्लस मिथ्या आजकल टू मिथ्या, 10 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, तो आंसर यदि तुमने आजकल टू मिथ्या लिख दिया तो 10 के 10 तुम पास हो जाओगे कि नहीं। और यदि तुमने मिथ्या प्लस मिथ्या इक्वल टू मिथ्या की जगह सत्य लिख दिया होता तो तुम फेल हो जाते, क्योंकि मिथ्या, और दूसरा क्वेश्चन था मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू, बोलो आप, मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि मिथ्या का और सत्य का प्लस हो सकता है, बताइए हैं? मिथ्या का और सत्य का कोई प्लस पॉइंट होता है? प्लस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो उसका आंसर तुम चाहे मिथ्या दोगे तो भी वह गलत हो जाएगा, सत्य दोगे तो भी गलत होगा। मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू मिथ्या यदि तुम दोगे तो भी वो तुम्हारा आंसर गलत होगा। तुमको ये विचार नहीं कर सके तुम कि क्वेश्चन गलत है, तुम आंसर को देने के लिए चेष्टा कर रहे हो, गलत क्वेश्चन का आंसर देने की चेष्टा क्यों करना है ना? गलत क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करेगा तो सत्य कहेगा तो भी गलत होगा, मिथ्या कहेगा तो भी गलत होगा। उसको तो सबसे बढ़िया एक कह देना चाहिए, नंबर लेना हो तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन ही गलत है, तब तो वो पास भी हो सकता है, है? तुम सत्य कह दोगे तो भी फेल हो जाओगे, मिथ्या कहोगे तो भी, क्यों? क्योंकि मिथ्या का और सत्य का प्लस पॉइंट होता नहीं। और हम कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आज तक। आज तक हम यही कर रहे हैं, मिथ्या और सत्य का प्लस करना चाहते हैं, इसलिए रिजल्ट हमेशा गलत हो जाता है, हमेशा फेल हो जाते हैं। अखंडानंद जी पास हो गए, तुम क्यों नहीं पास हो रहे हो? प्रेमपुरी जी पास हो गए इस हिसाब में और तुम क्यों नहीं पास हो रहे हो? बोलो, शंकराचार्य पाठ हो गए, अखंडानंद जी पास हो गए, बड़े बड़े महात्मा लोग सब पास हो गए और हम क्यों फेल हुए जा रहे हैं? हम ये नहीं कह पा रहे हैं। वो पास हो रहे हैं तो दो कारणों से, मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या, पास हो गए, वो पास हो गए। अखंडानंद जी ने शादी किया, अखंडानंद जी के बच्चे हुए, पास हो गए, फिर भी तुमने शादी की और तुम्हारे बच्चे, तुम फेल होते हो, कारण क्या है? कृपाद्री जी ने शादी किया, बेटी हुई, साधु हो गए, पास हो गए, फेल नहीं हुए, तो हम क्यों फेल होते हैं? फिर हम भी शादी कर रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, पैदा करते हैं, फिर भी क्यों फेल होते हैं? जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो वो पास हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, कारण क्या? वह मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या करके पास होते हैं, हम क्या कहते हैं, मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू सत्य। हम रिजल्ट हमेशा सत्य खोजते हैं, मिथ्या प्लस का रिजल्ट हम हमेशा सत्य खोजने लगते हैं तो हम पास हो, इसलिए हम हमेशा समझाते हैं। ये उदाहरण देकर, कोई कपल थे, पति पत्नी थे, उसकी एक जवान बेटी थी, दोनों पति पत्नी वेदांत सुनने आया करते थे, शायद आत्मानंद के वेदांत सुनते हो, कभी कभी मोहनानंद जी के भी सुनते हो, विशुद्धानंद जी के भी सुनते हो, वेदांत सुनने आया करते थे नियमित रूप में, और वहां सुन लिया कि सब जगत मिथ्या है, बाप भी मिथ्या है, मां भी मिथ्या है, बेटा भी मिथ्या है, बेटी भी मिथ्या है, जगत ही मिथ्या है, नाम रूप दोनों मिथ्या है, दोनों ने सुन रखा था। अब उसकी बेटी जवान हो गई थी,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Chadayanayanar Puranam, presented by Sri சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் ஜிஸ் தட்சிண பாரதீய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி சுனேங்கே, உன்கா நாம் சடயனார் ஹை. தாமில் சைவ பக்த சாஹித்ய தர்ம ஔர் தர்ஷன் கே இதிஹாஸ் மே சுந்தரகிருத் திருத்துண்ட தோகை கா விசேஷ மஹத்வ ஹை. இஸ்மே உன்ஹோனே அப்னே யுக் சே பூர்வ கே கதா ததா அப்னே யுக் கே பிரசித்த 63 சந்தோ கே நாமோ கா உல்லேக் கியா ஹை. निसंदेह सुंदरल के पूर्व और उनके समकालीन सहस्रों भक्त संत रहे होंगे, पर युगों से प्रसिद्ध तथा अपने समाज में समादृत जिन 63 संतों का वर्णन सुंदरल ने किया है, उनके विषय में 11वीं शताब्दी में तिरुमरे ग्रंथों के संपादक नंबियांडार नंबी ने 79 पदों में गायन किया है। पेरिय पुराणम के रचयिता चक्किलर ने 4286 पदों में इन 63 प्रभु सेवकों के चरित्र की रचना की। सुंदरमूर्ति नायनार प्रभु के सखा के रूप में जाने जाते हैं। साक्ष्य भाव की भक्ति इनके जीवन का लक्ष्य था। इनका जन्म नावलूर में आदिशैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चड़ैनार था। सुंदरल को जन्म देकर शैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करके जो योगदान चड़ैनार ने किया, उसके लिए पुराणकार इन्हें सादर स्मरण करते हैं। सुंदरल का बचपन का नाम नंबियारूर था। इन्होंने भगवान शिव को अपनी प्रेमिका के पास दूत बनाकर भेजा था। श्रेष्ठ भक्त चेरमान पेरमाल की मित्रता इन्हें प्राप्त थी। ऐसे सुंदरमूर्ति को इस जगत में जन्म देने वाले इनके पिता चड़ैनार धन्य हैं, इसलिए उन्हें एक संत के रूप में उन 63 संतों के बीच गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
1: ஓம் நம சிவாய. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Adiguru Bhagwan Shankaracharya Virachit Shiva Bhakti Sivotaprot Shivananda Lahari. इस स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है. प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की श्रृंखला, 13 दिवसीय यह श्रृंखला का आज चौथा दिवस, चतुर्थ श्लोक अभ्यास के लिए चौथा श्लोक. सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा

समनम् वृथाकण्ठक्षोभम् वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजम् शम्भोर् भज परमसौख्यम् व्रजसुधि मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रपणितौ।

आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शिवा, हे शंभो, सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदाह। क्षुद्र व्यक्तियों के लिए, क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत व्यक्ति हैं, और मेरे दृष्टि में वे लोग भी क्षुद्र ही हैं। ये वाक्य पर ध्यान देना, क्षुद्र व्यक्तियों के लिए क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत से क्षुद्र व्यक्ति भी हैं, लेकिन न मन्ने सोपने वा, मुझे उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया वो क्षुद्र फल की कामना स्वप्न में भी नहीं होती है। जागृत में होने की तो बातें छोड़ दो, तदनुसरणम तत्कृत फलम। फिर तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव पूछे शंकराचार्य जी से, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूं महाराज, हरि ब्रह्मादीनाम अपि निकट भाजम असुलभम। आपकी चरण की सेवा करने का अवसर विष्णु और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता। इंद्र वरुण की तो बातें छोड़ दो, और संसारियों की तो और बात छोड़ दो। जिसकी चरण सेवा करने का अवसर हरि ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं है, मैं तो उसी चरण की सेवा करना चाहता हूं। बस वो चरण है, चिरम याते शंभो। हे शंभो, मैं तो यही चाहता हूं कि दीर्घ काल तक, कब तक? जब तक स्वरूप स्थिति न हो, चिरम संसार में मुझे यही दो चीज चाहिए। एक तो मेरा लक्ष्य है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति की तरह शिवम वेद शिवैव भवति। आपको जानने वाला आप ही हो जाए, आपकी और मेरी पृथक अस्तित्व न रहे रंच मात्र भी। और यदि आपके स्वरूप मोक्ष, स्वरूप उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारण से आपसे भिन्न रहना पड़ेगा, तो जब तक भिन्न रहूंगा तब तक मैं यही चाहता हूं कि आपके तव पदाम्बोज भजनम, नित्य निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। या तो आपसे अभिन्न हो जाऊं, आपसे भिन्न का मेरा अस्तित्व न रहे। जो वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, और यदि अलग रहता हूं तो हमेशा आपकी सेवा, चरण की सेवा करने की मेरी इच्छा है, चिरम याते। इसके अलावा मेरी किसी और कोई इच्छा नहीं। अरे भाई, जब तक संसार में रहेगा, व्यवहार में तो सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तुझे जब तक शरीर रहेगा, प्राण रक्षा के लिए भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और उस भोजन की याचना, भिक्षा तुझे करना हो, करना पड़ेगा।
और भिक्षा की याचना करने के लिए तो संसार में गली मोहल्लों में तुझे जाना ही पड़ेगा, और यदि किसी से कुछ चाहिए तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति भी करनी पड़ेगी। संसार में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं प्रहलाद का पौत्र, क्या नाम था प्रहलाद का पौत्र, बलि था, पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि, पौत्र, और हिरण्यकश्यपु का प्रपौत्र। कहते हैं कि वो उसने बड़ा भारी यज्ञ किया, क्योंकि तीनों लोग उसके अधीन था। अब विचार करो, तीनों लोग बलि के अधीन था तो शिव कहां रहे होंगे, है? तीनों लोक का वो राजा था तो शिव कहां रहे होंगे, तो शिव भी तो उसी के अधीन रहे कि नहीं? अरे भाई, शिव तीन लोक से परे हैं भाई, हाँ, शिव तीन लोक से परे होने के कारण बलि ने तो तीन लोक की शासन अपने हाथ में ले ली थी, तीन लोक का मालिक था। शिव तो तीन लोक से भी परे है ना, इसीलिए बलि के साम्राज्य के अंतर्गत अधीन में शिव नहीं है। ये बात अलग है कि शिव का, बलि का साम्राज्य भी शिव का ही है, लेकिन बलि केवल तीन लोक का साम्राज्य है, मालिक है, लेकिन भगवान शिव तो अनंत लोक का मालिक है, इसलिए शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। तब उन लोगों ने षड्यंत्र किया, हाँ, भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमारा राज्य जो है बलि ने कब्जा कर लिया, और तीनों लोग बलि ने कब्जा कर लिया, परिणाम यह हुआ कि हमको रहने का कोई ठिकाना नहीं, और असुरों के राज्य में रहना पड़ रहा है, उसके कहे अनुसार हमको अनुशासित होकर काम करना पड़ रहा है, इसलिए आप कृपा करो, हमें तीनों लोग की राज्य की आवश्यकता नहीं है। पांडवों ने कहा था ना, हमको पूरा हस्तिनापुर के सिंहासन नहीं चाहिए, क्या कहा था, हम पांच भाई हैं, छोटा हस्तिनापुर के एक कोने का पांच गांव दे दो, हम उसी में हम गुजारा कर लेंगे, पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन हमको नहीं चाहिए। दुर्योधन उस साम्राज्य का राज्य करता हो तो करे, हमको राज्य भोग की कोई आकांक्षा नहीं है। ये प्रस्ताव दुर्योधन के सामने गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हम उनको पांच गांव की बात छोड़ दो, एक सुई रखने बराबर की भी जगह नहीं देंगे। इसी तरह देवताओं ने विष्णु को कहा, महाराज तीनों लोक की हमें आवश्यकता नहीं है, वेद ने, शास्त्र ने, आप लोगों के अनुशासन ने हमारे लिए जिस भूमि की, जिस लोक की परिकल्पना की है, द्युलोक, हमको वही चाहिए, बस स्वर्ग हमको प्राप्त हो जाए, बाकी भूलोक और पाताल आदि सब जिसकी है वो भोगे, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको हमारा राज्य चाहिए। क्या करें महाराज? अब लड़ने जाते हैं तो बलि उसी का भक्त है, तो अपने भक्त से क्या लड़े? तो कहते हैं उसी समय वह यज्ञ कर रहा था,
भगवान ने विचार किया कि जाते हैं, यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठा है तो यज्ञ की पूर्णता दान करने में ही है। तो हम ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे, कुछ मांगेंगे और देगा वो, कहेगा कि क्या चाहिए तुमको, तो हम मांग लेंगे और तुम्हारा राज्य हम तुमको दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो भगवान विष्णु ने नाटक किया, हम लोगों को पता ही है ना, आप लोगों के सामने किया है ना, है सामने किया, नाटक किया उन्होंने, बावन बन गए वो। उनका नाम बावन क्यों हुआ, कहते हैं उंगली से नापो तो केवल 52 उंगली, इतनी उनकी हाइट थी, कितना 52 उंगली, 4, 8, 52 हाइट, हाइट कितना हुआ होगा, हाँ इतने थे वो, छोटे से थे। तो वो चले गए और बलि ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण बालक तुम क्यों आए हो। बोले हमने सोचा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़े मालिक हो तीनों लोक की, और हम ब्राह्मण हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई निजी भूमि हो और जहां हम आसन बिछाएं और गायत्री का अनुष्ठान करें, क्योंकि दूसरे के भूमि में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो जमीन जिसकी है अनुष्ठान का आधा फल तो जमीन वाला ही ले जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान शुद्ध हो, पूर्ण हो, इसलिए हमको थोड़ा जमीन दे दो। बलि ने कहा कि कितनी चाहिए। नहीं नहीं हम बड़े संतोषी हैं, हम तो द्वापर युग के ब्राह्मण हैं, कलयुग के नहीं। कृष्ण किस युग के ब्राह्मण थे बलि के सामने, हैं द्वापर युग के ब्राह्मण थे ना, तो कृष्ण माने कृष्ण भगवान नारायण जो कहो, बलि तो द्वापर युग का था। तो हम ब्राह्मण द्वापर माने द्वापर युग के ब्राह्मण है, कलयुग के नहीं है। बहुत थोड़े में संतोष करते हैं, हमको 3 पग जमीन दे दो। बोले और ज्यादा मांग, हमारा तो तीनों लोक का साम्राज्य है, 3 पग क्या मांगता है, है? गंगा जी के पास जाकर केवल 3 बूंद पानी लेना कोई समझदारी है क्या? भरो बाल्टी जितना भरना हो। भगवान ने कहा कि नहीं, लोभ पापस्य कारण, हमको उतने ही है। जितने संतोषात अनुत्तम सुखलाभ, जितना कम हो उतना ही सुखी और जितना ज्यादा हो उतना ही दुखी। सांसारिक पदार्थों के बारे में ये बिल्कुल सत्य घटना है। सांसारिक पदार्थों का जितना ज्यादा संग्रह होगा उतने ही ज्यादा दुख होगा, और सांसारिक पदार्थों का जितना कम प्रयोग होगा, उपयोग होगा, उतने ही आनंद, उतने ही सुख होगा। भगवान ने कहा कि हमको तो 3 पग हो गया काम, और क्या, हमको तो भजन करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है 3 पग ले लो। और भगवान ने अपने 3 पग से सब कुछ ले लिया और ले जाकर किसको दिया, देवताओं को दे दिया, ले वो तुम्हारा है, तुम ले लो महाराज आपके लिए। बोले हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि क्या था, वो तो क्षुद्र जीव है। राजा बलि हालांकि अन्य साधारण जीवों के दृष्टि से वो बड़ा महान हो सकता है, लेकिन भगवान और शिव के सामने राजा बलि तो एक क्षुद्र जीव है। और राजा बलि जो देगा वो सब क्षुद्र ही तो हैं, पृथ्वी और पृथ्वी लोक का जो भी वस्तु हैं वो सब क्षुद्र ही तो हैं, स्वर्ग स्वर्ग के पदार्थ,
इसलिए तो उपनिषद ने कहा है, यद्यथेह कर्मचीत लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचीत लोकक्षीयते। अपरोक्षानुभूति में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मल वैराग्य का लक्षण, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम अनित्य भोग वस्तुनि, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर्यंत सारे लोक लोकांतर के जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य वस्तु है, क्योंकि वह भोग्य है, भोक्ता के द्वारा भोग्य है। किसी भोक्ता के द्वारा जो भोग्य होगा वो भोग्य क्षुद्र ही होगा, अनित्य होगा। यथैव काकविष्टायाम, जैसे एक मनुष्य को एक तरफ रसपुरी रख दो और एक तरफ कौवे का विष्टा रख दो तो पहले कौन खाएगा, कौवे का विष्टा खाएगा कि रसपुरी खाएगा? है कौवे के विष्टा को देखना भी नहीं चाहेगा, खाएगा है। यथैव काकविष्टायाम, ये अपरोक्षानुभूति का श्लोक है, तद ही वैराग्यम तद ही निर्मलम। जब किसी को जब इस प्रकार की दृष्टि बनती है, ब्रह्मादि स्थावरांतम जितनी भी भोग्य वस्तुएं ये सब अनित्य हैं, कैसे तो बोले यथैव काकविष्टायाम, वो कौवे के विष्टा के प्रति मनुष्यों की जो दृष्टि बनती है वैसे ही दृष्टि भोक्ता को इन पदार्थों में बन जाए तब वो निर्मल वैराग्य कहलाएगा, तभी वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहलाएगा। तब बलि एक क्षुद्र राजा है, ठीक है, हमने उस दिन प्रवचन में कहा था ना, विराट के सामने हम तो क्षुद्र हैं, कुछ भी नहीं है, भले ही हमारे शरीर के जीव कण रक्त कणों के जीवों के सामने हम विराट हैं, हमारे जो मुख में कफ निकलता है उसमें कितनी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं कि नहीं, उनके दृष्टि में तो हम विराट हैं कि नहीं बोलो, हैं? उनके लिए तो हमारा तो शरीर तो क्या तीनों लोक हैं, 14 भुवन है, उन जीवों के लिए हमारा शरीर तो 14 भुवन है, वो तीन लोक 14 भुवन एक ब्रह्मांड है, उनके सामने हम भले ही महान हो लेकिन विराट के सामने तो हम क्षुद्र हैं कि नहीं। इसी तरह परमात्मा भगवान शिव के सामने तो जितने भी बलि हो चाहे कोई हो वो सब क्षुद्र जीव हैं, और वो जीव खुद ही क्षुद्र हैं, तो वो जिन राज्यों का जिन वैभव का भोग कर रहे हैं वो भी शिव जी की दृष्टि में तो क्षुद्र ही हैं, और शिव जी की दृष्टि में यदि क्षुद्र हैं तो असली शिव भक्त की दृष्टि में भी वे सब क्षुद्र ही हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं इस संसार में सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगत में हजारों हैं विबुधा, बड़े समझदार हैं, बड़े दाता हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्षुद्र फलदा, तुच्छ फल देने के लिए तो हजारों हैं, सांसारिक भोग्य पदार्थ प्रदान करने वाले तो बहुत मिलते हैं, हाँ संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज मेरे सामने तो मेरे लिए तो उन सब राजाओं के द्वारा दिया गया पदार्थ बिल्कुल तुच्छ है, उनके उन राजाओं को उन दाताओं को और उनके दिए हुए पदार्थों को मैं तो स्वप्न में भी उसकी कामना नहीं करता, जागृत में कामना करने की तो कोई बात ही छोड़ दो,
సహస్రం వర్తంతే జగతి విభుధః క్షుద్ర ఫలదః నమన్నే స్వప్నే వా తదనుసరణం తత్కృత ఫలం. ना उनकी स्तुति करने जाऊंगा मैं, ना उनके द्वारा दिए गए पदार्थ की आकांक्षा करूंगा. फिर तुम क्या चाहते हो? हरि ब्रह्मादीनाम. मैं तो वो चाहता हूं जो विष्णु और ब्रह्मा जो दुनिया में बड़े महान कहलाते हैं. लेकिन महान होने पर भी उनको भी आपकी चरण की सेवा उपलब्ध नहीं है. और मुझे पता है आपकी जो धर्म पत्नी पार्वती है ना, वो भी कभी कभी साड़ी की कामना हो तो आपकी चरण की सेवा करती है. हंस लिया ना तुमने, कम से कम इतना तो हंसे हो ना, शायद हंसने का मौका और जगह ना मिलता है, इतने तो हंसती हो ना तुम लोग. कभी कोई एक ज्वेलरी की आवश्यकता हो तो शिव की सेवा करने के लिए शायद नजदीक जाए. चिरम 2400 घंटा तो शायद पार्वती

0: जब तक, तब तक मैं आपकी चरण की सेवा करता रहूं। और जिस दिन जीव भाव मेरी छूट जाएगी, उस समय मुझे किसी की सेवा करनी नहीं पड़ेगी, न करानी पड़ेगी, न करनी पड़ेगी न करानी पड़ेगी। अच्छा भाई, शिव जी को अपनी चरण की सेवा करानी पड़ती है कि नहीं है? कभी कभी उनके टांग दुखते हैं कि नहीं? आप लोगों का दुखता है कि नहीं? जब टांग दुखता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि नहीं कोई आके टांग दबा दे? है? होती है ना, जब दुखता है तो कोई काम ज्यादा करना पड़े, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़े है? तब मन में तो होता है, भले ही वो साधन उपलब्ध न हो, आपकी बहु आज्ञाकारी होगी तो बेटी जरा ये टांग दुख रहे हैं थोड़ा दबा देना तेल लगा के, कहोगी। या कोई आज्ञाकारी सेवक होगा, नौकर होगा, कर्मचारी होंगे, बाई होगी, उसको कहेंगे आज तो बहुत दर्द हो रहा है जरा दबा दे है? लेकिन भगवान शिव के मन में कभी इच्छा होती होगी कि नहीं? अरे भगवान शिव के मन में कोई मेरी सेवा करे ये इच्छा नहीं होती है। फिर शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि मुझे आपकी निरंतर चरण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूं। इसका मतलब है कि भक्त भगवान की सेवा करे ये भगवान नहीं चाहता, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं। क्योंकि सेवा से, भक्त की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। समझ गए कि नहीं? भक्तों की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, और भगवान यानी परमात्मा भक्तों से यह अपेक्षा रखता ही नहीं है कि भक्त मेरी सेवा करे, नहीं रखता है। फिर क्यों करते हैं सारे भक्त भगवान की सेवा है? क्योंकि ये कहा गया है भक्तों का ही हित होगा। भगवान की सेवा करके भक्तों का ही हित होने के कारण भगवान भी यह चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरी सेवा करेगा तो उसी का हित होगा, मेरा तो कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। आप तो काम से कहा स्प्रिया, उपनिषद ने कहा जो आप तो काम है उसकी क्या स्प्रिया होगी, परमात्मा तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, वो भक्तों की सेवा की अपेक्षा क्यों रखेगा? फिर क्यों बार बार कह रहे हैं परमात्मा कर्म करो और मुझे दो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो? बार बार क्यों कहते हैं? परमात्मा को हमारे कर्मों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? परमात्मा खुद निकम्मा है क्या? कमा के खा नहीं सकता है क्या है? कमा के नहीं खा सकता है क्या? परमात्मा को क्यों ये कहना पड़ा कि खाने से पहले तो दी इम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, ये करके खाओ, ये क्यों करना पड़ रहा है उसको? इसीलिए कि उस अन्न में शुद्धि हो, उस अन्न से भगवान की तृप्ति नहीं होगी। तुम जो कटोरी में थोड़ा सा, छोटे से कटोरी में थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर भोग लगाओगे, तुलसी का पत्ता रख के, क्या वो पेट भर जाएगा उसका? कभी सोचा है? है? तुम्हें दूध पीना हो को शाम को तो पूरा गिलास चाहिए, फुल।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: पुनः इसी सोमा स्कंद को भगवान विष्णु से इंद्र ने प्राप्त किया और इंद्र को प्रसन्न करके मुच्चुकुंद ने प्राप्त करके दक्षिण भारत में इसकी स्थापना किया। मुच्चुकुंद के विषय में भी शिवभक्त चरित्र में एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर कैलाश से नीचे भ्रमण करते हुए नंदनवन में आए। नंदनवन में आने के बाद भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बैठ करके पार्वती को अनेक प्रकार से आत्मज्ञान की कथा सुनाने लगे, भगवत चर्चा शुरू कर दिया। जब भगवत चर्चा कर रहे थे संयोग से काला मुख का वानर आया और वानर आकर के पेड़ों पीधा उधर घूमने लगा और बाजू में बिल वृक्ष के पेड़ थे। जब बंदर इधर उधर घूमता तो उसके पैरों के चोट से कुछ हाथ से बिल व पत्ते नीचे गिर के गिरते जाते। भगवान शंकर जब तक आत्मज्ञान उमा को सुना रहे थे तब तक लगभग 1008 बिल पत्र गिरते रहे। भगवान शंकर ने कहा, देखो भवानी, 1008 बिल पत्र इस वानर के अनजाने से पत्ते गिरे हैं और सौभाग्य से आज प्रदोष है। प्रदोष बोलते हैं प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी जो तिथि होती है, द्वादशी से विद्या होती है, उसका नाम प्रदोष है। प्रदोष काल था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उस वानर को संकेत से बुलाया, उसे वरदान दिया कि जा तो धरती पर 1008 वर्ष तक राज्य करेगा। इस वरदान को सुनने के बाद वह वानर रोने लगा कि शास्त्रों में बतलाया है कि आपका दर्शन होने के बाद मोक्ष मिलता है और आप मुझे राज्य प्रदान कर रहे हैं। राज्य में अनेक प्रकार के बंधन हैं, आसक्ति होती है, कामना वासनाएं हैं। जैसे अग्नि में हम जितना घी डालते हैं उतनी ही लपटे बढ़ती जाती है, अग्नि शांत नहीं होती है। ऐसे राज्य के भोगने से और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह तो हम सभी लोगों की आत्मानुभूति है। बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, न जाने कितने भोगों को हमने भोग लिया, फिर भी आंखें भी अतृप्त है, कान भी अतृप्त, जीभ भी अतृप्त। यदि आंख एक बार सौंदर्य युक्त पदार्थ को देख लेती, पकड़ लेती, तो बार बार जो है ललचाई हुई आंखों से फिर हम बाजार के दृश्य को नहीं देखते, क्योंकि हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई से नए नए रूपों को देखना चाहते हैं। ऐसे जीव यदि एक बार तृप्त हो जाती तो फिर नए नए पकवानों की, मिष्ठानों की इच्छा नहीं करती, पर यह भी तृप्त नहीं हुई। और कान भी ऐसा ही है, कान भी नए नए मनोरंजन कारक बातों को सुनने के लिए लालायित रहता है। तो संसार के विषय ऐसे हैं, जितना विषय का सेवन किया जाए उतने ही ये जो है विषयों की लपटे बढ़ती जाती हैं और ये लपटे जो है हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देती है। इसीलिए उपनिषद में जहां पर अन्न शब्द का प्रसंग आता है वहां पर दो व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने किया है, अत्तीति अन्नम और आद्यते भोज्यते इति अन्नम। एक ही शब्द है, दो अर्थ निकाला है। हमारे यहां व्याकरण दर्शन की महिमा है व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम। एक ही शब्द है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा विलक्षण अर्थ निकल आता है। अत्तीति अन्नम का अर्थ है जो पूरे संसार को भक्षण करता उसका नाम अन्न है। दूसरा है कि जो खाया जाए उसका नाम अन्न है, पर वास्तव में देखा जाए तो अतिथि अन्न में जो है सटीक बैठता है। अन्न हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है, हम जो है शमशान में जलकर राख हो जाते हैं, परंतु वह जस का तस बना रहता। तो उस बंदर ने कहा कि भगवान, ये जो आपने राज्य का वरदान दिया इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तो हमारी आज्ञा मान और तुझे बहुत जल्दी मोक्ष मिलेगा। तो जो है हमारे भक्तों से प्रीति करना, भगवान विष्णु की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना से तुझे सोमास्कंद नामक लिंग की प्राप्ति होगी, उसके बाद तू मुझे मरने के बाद सयुज मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही जो बानर था मरने के बाद मुचकुंद बना, मुचकुंद बनने के बाद जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के हाथ से सोमास्कंद प्राप्त किया। जब इंद्र से मुचकुंद की मैत्री हुई, मैत्री होने के बाद इंद्र ने कई बार मुचकुंद से सहायता ली। खैर आजकल तो ऐसा सुनने में नहीं आता है, पर प्राचीन हम पुराणों का अवलोकन करते हैं उसमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिस प्रसंग में इस धरती के बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा स्वर्ग लोक जाकर देवताओं की सहायता करते थे, उसमें से मुचकुंद भी बहुत मशहूर हो गए हैं। जब मुचकुंद देवासुर संग्राम करते करते थक गए तो थकान मिटाने के लिए उन्होंने सुखपूर्वक शयन की निद्रा मांगी। यह तो प्रसिद्ध है, भागवत में भी कथा मिलती है, परंतु शिव चरित्र में कुछ विलक्षण एक कथा मिलती है। यही मुचकुंद जब देवासुर संग्राम में दैत्यों को हरा दिए, उस समय इंद्र इनका बड़ा सम्मान करते थे और इंद्र ने कहा कि तुम अपना जो सबसे अभीष्ट प्रिय हो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अधेय नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे अपना सोमास्कंद शिवलिंग प्रदान कर दीजिए। इंद्र बहुत चिंतित हो गए, इस सोमास्कंद को मैं कैसे दे दूं। इंद्र ने बात को घुमा दिया। इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे यह सोमास्कंद नामक शिवलिंग दिया है, यह उनकी धरोहर है, यह यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। मुचकुंद भगवान विष्णु की उपासना में लग गए। 12 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे सोमास्कंद लिंग जो आप इंद्र को प्रदान किया वही मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया। जब भगवान विष्णु की अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद इंद्र के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया है, अब आप मुझे सोमास्कंद लिंग प्रदान कीजिए। इंद्र ने कहा कि कल प्रातः काल ले जाना, इधर जो है रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि तुम ऐसा सोमास्कंद बनाओ कि राजा को पहचान न हो असली नकली का। देखो इंद्र बहुत चतुर राजा माने जाते हैं, और ऐसा कृत्रिम सोमास्कंद लिंग बनाया कि राजा पहचान न पाए कि असली किया नकली किया, और उस नकली सोमास्कंद लिंग को प्रदान कर दिया। जब नकली सोमास्कंद लिंग को लेकर के धरती पर आए, दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित करके पूजा करने लगे, उन्हें सपने भगवान शंकर ने बतलाया कि इंद्र ने तुम्हें धोखा दिया है, यह जो है विश्वकर्मा से निर्मित नकली सोमास्कंद लिंग है। पुनः दोबारा गए, बोले कि इंद्र तुमने मेरे साथ छल किया है और यह तो नकली सोमास्कंद लिंग है, मुझे असली दो। इंद्र ने कहा कि ठीक है, कल पुनः ले जाना। इस तरह से 6 बार ठगा है इंद्र ने मुचकुंद को। सातवें बार मुचकुंद को बड़ा क्रोध आया है, बोले कि देखो तुम बार बार मुझे नकली शिवलिंग देते हो और भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं मांगता हूँ, और अब की बार धोखा दोगे तो हमारा तुम्हारा हमेशा के लिए बैर हो जाएगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। तब जाकर के इंद्र सातवीं बार अपने प्रिय सोमास्कंद लिंग को मुचकुंद को प्रदान करते हैं। इंद्र को बहुत दुख हुआ, पर अब करते भी क्या, और पूजा का जो नियम था नियम बदलाया कि प्रातः काल उठ करके षोडशोपचार से पूजा करना। षोडशोपचार का अर्थ होता है कि पाद्योपाद्यम हस्त्यवर्ग्यम मुख्याचमनियम जितने हैं, स्नान है, माला है, नैवेद्य आरती पर्यंत, ये जो पूजा कहलाती है, इस तरह से पूजा करना। और इस सोमास्कंद के महिमा को बतलाया, वही सोमास्कंद लिंग जिसको कि पहले भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, विष्णु से इंद्र ने, इंद्र केवा मुचकुंद ने, तो वही राजर्षि मुचकुंद ने दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित किया है, उसकी बहुत ही विशेष महिमा यहां बतलाया है। तो भगवान शंकर के चरण की आराधना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यह केवल भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। यह शास्त्र का वचन है कि मनुष्य जैसा भी शुभाशुभ कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए फिर भी जो अच्छे बुरे किए हुए कर्म उनको भोगना ही पड़ता है। परंतु भगवान शंकर के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि भावी को प्रारब्ध को मेटने में समर्थ है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि मनुष्य अपने मृत्यु के भय को निवारण करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और इससे बहुत कुछ संभव होता भी है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी की जीवनी है, उनकी केवल 8 वर्ष की आयु थी, परंतु उनके पिता श्री मृकंडू ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी 8 वर्ष की आयु है और आज से 5वें दिन तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। केवल 5 दिन की उपासना से ही भगवान शंकर को महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया और हमेशा के लिए चिरंजीवी बन गए मार्कंडेय ऋषि। तो भगवान शंकर की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य उपासना करने चलता है तो एक बड़ी भारी समस्या आती है। समस्या यह आती है योग क्षेम की। वह सोचता है कि यदि मैं उपासना करूं तो हमारा योग क्षेम कैसे चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कहा है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दुनिया कोई विश्वविद्यालय कोई भी आदमी इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकता है कि तुम पढ़ो लिखो साक्षरों में तुम्हें नौकरी दे ही दूंगा, कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकता। पर भगवान बिल्कुल ताल ठोक के कहते हैं, क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतियंतो माम, बस खाली तुम चिंतन करो, योग क्षेम का तो वहन मैं खुद करूंगा। नरसिंह मेहता जो गुजरात में बहुत मशहूर हो चुके हैं, भगवान ने उनका सारा योग क्षेम, बहुत लंबी कथा आप सब लोग जानते हैं, कैसे वहन किया। उनके लिए भगवान सेठ बन गए, साहूकार बन गए, न जाने क्या क्या भगवान बन गए। ये कलयुग की घटना है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथा है सुंदर पांडे की। सुंदर पांडे पांड्य देश के राजा थे, वे भगवान शंकर के हमेशा उपासना करते थे। एक दिन घूमते हुए वह अपने राज से बाहर कहीं चले गए। नदी किनारे घूम रहे थे, कुछ वहां पर जादूगर आए। जादूगरों ने कहा, राजन आपको हमारा नमस्कार हो, और आप जिस शिव की कंकड़ पत्थर की उपासना करते हैं वह तो कंकड़ पत्थर न बोल सकता है, जो स्वयं कुछ बोल नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, तो इस पत्थर की उपासना करने से क्या मिलेगा। आप देखो हमारे जादुई छड़ी में यह बल है कि जो चाहोगे सो हम कर सकते हैं। पांड्य, सुंदर पांड्य राजा के सामने उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो ये लिंग है इसको हम चाहें तो सोना बना सकते हैं। राजा ने कहा कि जी तुमने सोना बना दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब बात ही बात में जो है तुरंत उसने मोर पंख से मंत्र पढ़ा और हाथ का शिवलिंग जो है वह सोना बन गया। अब सोना बनते राजा उस जादूगर के चरणों में गिर पड़े, बोले कि तू महान है। और तब से राजा ने भगवान शिव की उपासना छोड़ करके उस नास्तिक मत की दीक्षा ले ली। नास्तिक मतलब शरीर ही आत्मा है, तंत्र मंत्र सब कुछ है, इस कंकड़ पत्थर की पूजा करने से क्या होता है। इधर जो है जिस देश का राजा नास्तिक हो जाए, नास्तिक मत में दीक्षित हो जाए, प्रजा भी वैसी हुई हो जाती है। मंत्री रानी बहुत चिंतित हुए, दुर्भाग्य से चमत्कार के वशीभूत होकर राजा ने शिव भक्ति छोड़ दिया है, अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। परंतु राजा के सामने कौन बोले, पूरे राज्य में जो है नास्तिकों का बोलबाला हो गया, सर्वत्र जो है यह प्रसिद्धि हो गई कि शून्य ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मंत्री ईरानी के सम्मति से उस जमाने के बहुत मशहूर दक्षिण भारत में ज्ञान स्वामी थे, ये भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। उस ज्ञान स्वामी के पास मंत्री जाते हैं और जाकर अपने राजा की अवस्था का वर्णन करते हैं कि हमारे राजा भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु नास्तिकों के चमत्कार से प्रभावित होकर वे नास्तिक मत को स्वीकार कर चुके हैं। चमत्कार का मतलब होता है कार्य कारण भाव। जो चीज सामान्य ज्ञान से समझ में न आए परंतु कार्य कारण भाव से परिवर्तन, उसका नाम है चमत्कार। तो चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने शिव पूजा छोड़ दिया है। जब इस प्रकार से कहा तो ज्ञान स्वामी पांड्य देश के नगर में प्रवेश करते हैं, उनको एक बगीचे मंत्री ने ठहरा दिया और ठहराने के बाद सारा समाचार बता दिया। उधर जो है जब नास्तिकों ने सुना कोई भगवान शंकर का भक्त जिसका नाम सुंदर स्वामी है वो प्रधारा है, और वह जो है राजा से परामर्श करने वाला है, बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर के मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया, ऐसा मारण मंत्र का प्रयोग किया कि अग्नि जलती हुई सुंदर स्वामी के पास आई और उनके एक कुटिया को जलाने लगी। सुंदर स्वामी ने भगवान शंकर के 10 श्लोकों में प्रार्थना किया, तमिल भाषा में प्रार्थना किया। इसके बाद भगवान शंकर ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद अग्नि शांत हो गई। अग्नि देव ने कहा कि मैं तो शांत हो गया परंतु आप मुझे स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। सुंदर स्वामी ने कहा कि तुम्हें जिसने भेजा तुम उसी के पास जाओ, ये देश का राजा सुंदर पांडे तुम उसके पास जाओ, वही तुझे शरण देगा। वही अग्नि पुनः वापस पांड्य देश के राजा के पास आई और सुंदर पांडे को जलाने लगी। बेचारा जो है मूर्छित पड़ गया, बड़े बड़े वैद्य आए, झाड़ फूक की वह ठीक ही न हो, परेशान। सारी नब्ज देखी, बोले कोई बीमारी नहीं इनको है, बस शाम तक हम लोग ठीक कर देंगे अपने तंत्र मंत्र से, पर कोई फायदा न हुआ। अंत में उसमें से एक नास्तिक ने कहा, इस राज्य में लगता है कोई सही भक्त आ गया है, उसी के प्रभाव से ये जो है राजा का ज्वर बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है, उसको देश से निकाला जाए। मंत्री ने कहा, तुम तो झाड़ झाड़ फूक करके थक गए, तुम्हारी दवाई भी सारी समाप्त हो गई, कोई नहीं काम किया, और उल्टे तुम बोल रहे कि शिव भक्त को देश से निकालो तब शांत होगा। जब शिव भक्त को बुलाया गया, अच्छे आसन पर बैठाया, बैठते जैसे उन्होंने भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया, तत्काल ज्वर शांत हो गया, राजा उठकर बैठ गए। राजा ने कहा कि किसने मेरा संताप मिटाया है? मंत्री ने कहा कि शिव भक्त है, इनके मंत्र से आपका ज्वर शांत हुआ है। राजा ने कहा, ये नास्तिक लोग जो इतना बोल रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं ठीक किया? वे बोले कि राजन, इस समय दैव गति विपरीत चल रही है, इसलिए आप हम पर नाराज न होइए और आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि कौन मत श्रेष्ठ है, कौन मत श्रेष्ठ नहीं है, इसका नियामक तो शास्त्रार्थ है। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, परंतु शास्त्रार्थ में किसी का मत निर्णित नहीं हो पाया। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं एक कागज लिखकर अग्नि में डालता हूं, और जिसके मत का कागज जल जाए वह समझो कि हारा गया। राजा ने एक उनके मत सिद्धांत के अनुसार पत्र लिखवाया, दूसरा शिव भक्तों के द्वारा। जैसे ही उसकी उनके कागज को अग्नि में डाला, तुरंत जलकर राख हो गया। जब सुंदर स्वामी के पत्र को डाला तो बिल्कुल वैसे पत्र जस का तस रहा, नहीं जला। नास्तिकों ने कहा, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में हो सकता कोई दोष हो, और आपके दोष से ये अग्नि जो है ना हमारे कागज को जला डाली, इसलिए हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते, स्वीकार कर दिया। राजा ने कहा कि जब आप इतने बड़े प्रमाण को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तब तुम लोग ही बताओ कि मैं कौन सा प्रमाण पेश करूं। नास्तिक ने कहा कि राज से बाहर चलिए और बेगवती नदी में अपने अपने सिद्धांत के कागज को डाला जाए, जिसका कागज नदी के उल्टी दिशा में प्रवाहित हो वह मत श्रेष्ठ, और जिसका कागज डूब जाए वह मत कनिष्ठ। पर राजा ने कहा, क्या पता तुम लोग इसमें ही बेईमानी कर डालो, इसलिए पक्की शर्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि जो पराजित होगा उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे। जब ऐसा शर्त रखा, शर्त रखकर दोनों कागज मंगाया, दोनों के सिद्धांतों का, जैसे नास्तिकों के कागज को डाला वह तो जल में डूब गया, मछलियों ने खा लिया। जैसे सुंदर स्वामी के ओम नमः शिवाय मंत्रों से लिखित सिद्धांत को डाला, वह कागज जो है नदी की धारा के विपरीत चलने लगा। सारे नास्तिक पराजित हुए, उनको राजा ने सूली पर चढ़वाया, और कुछ तो डर के मारे राज्य को छोड़कर भग गए। तो सुंदर स्वामी भगवान शंकर के चरणों की उपासना से, ये कलयुग की कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है, दक्षिण भारत में ये कमलालय क्षेत्र की प्रसिद्ध, ये तमिल भाषा में ये तो अंकित है, हिंदी में नहीं है, शिवभक्त चरित्र में ये संकेत में लिखा हुआ मिलता है। तो भगवान शंकर की उपासना से जो भावी है, प्रारब्ध है, जो अवश्य हमें भोगना ही पड़ता है, वह भी मिट सकता है, बशर्ते हम जो है ना उसको साक्षात चैतन्य मानकर उपासना करें। और कलयुग में भगवान जो साक्षात चैतन्य है, वही चैतन्य भक्तों के उद्धार के लिए पाषाण खंड में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि सतयुग में त्रेता में तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव में विश्वास था, पर कलयुग के कारण से हमारी बुद्धि ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि यमुष चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है माता पिता गुरु उनको तो हम शिव पार्वती समझ नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए पाषाण खंड में प्रवेश हो जाता हूं। तो उस चैतन्य की महिमा है, यदि हम उसमें श्रद्धा पूर्वक उपासना करें तो निश्चित ही वहां से उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। शेष विचार कल करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
2: ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta
3: 29.
2: Thank you.

नव विज्ञशत्यास्तु वत वनस्पतायो सृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासि देकत्रिज्ञशतास्तु वत प्रजा सृज्यन्त यवाश्चाय वाश्चाधिपतय आसन् त्रयस्त्रिज्ञशता

भूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तथा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है, इसमें नौवें श्लोक की व्याख्या है। भूरं वांस्य नलो नीलोम्बर महर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उपनिषद की श्रुति है, सर्वं खलविदं ब्रह्मः। उपनिषद के दो विधि हैं, एक तो ये बताना है जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात को लेकर कहते हैं कि सर्वं खलविदं ब्रह्मा इदंती न प्रतीयमान, जो भी पदार्थ हैं वस्तुएं हैं नाम रूप से व्यक्त हुए हुए और जो अव्यक्त हुए हैं इंद्रियों से दिखने वाला प्रत्यक्ष और इंद्रियों से न दिखने वाले परोक्ष शब्दों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है उनको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष या स्थूल या सूक्ष्म, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात या अज्ञात, जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं है। अतः सर्वं खलविदं ब्रह्म। दूसरी बात, नेह नानास्ति किंचन, अथा तो आदेश नेति नेति, इंद्रियों से जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो नाम और रूप, ये ब्रह्म नहीं है, इनमें सत्यता नहीं है। कई बार विरोधाभासी ये बात सुनते हैं तो भक्तों को बड़ा असंगति लगती है कि कह क्या रहे हैं वेदांत। सर्वं खलविदं ब्रह्म ये वाक्य कहता है कि ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अथा तो आदेश नेति नेति, ये वाक्य ये कहता है कि यहां तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वो ब्रह्म है ही नहीं, ये बिल्कुल विरोधाभास है। ये किस तरह हम समझें, और विशेष करके ये कह दिया जाता है कि ये जो तुम देख रहे हो नाम रूप ये बिल्कुल मिथ्या है, तो समझ भी नहीं आती कि कैसे मिथ्या, कैसे माने कि ये मिथ्या है। सत्य जो है वो अनुभव में नहीं आ रहा है, और जो अनुभव में आ रहा है उसको मिथ्या कह दिया जा रहा है। ये मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है, वो अनुभव में आना चाहिए, तो वो अनुभव में नहीं आता। तभी ये वेदांत दर्शन एक रहस्य बना रहता है, फिर भी इसके आकर्षण है यथावत। आप लोग आ रहे हो, इसके बावजूद भी आप लोग आ रहे हो, किसी न किसी आशा में आ रहे हो, कुछ तो रहस्य खुलेगा। तो हम हमेशा ये दृष्टांत दिया करते हैं, एक गुरु और शिष्य थे, दोनों ही बड़े विचार करते थे, बड़ा वैचारिक थे वो, और दोनों का हमेशा वेदांत में ही विचार

0: करते थे, उपनिषद के आधार पर वेदांत दर्शन के बारे में ही विचार करते, जगत के बारे में विचार करते भी थे तो जगत की हेयता के लिए विचार करते थे। एक दिन की बात है कि दोनों गुरु चले कहीं गए खाना खाने। हम हमेशा समझाया करते हैं आप लोगों को ये बात। तो खाना खा के आ रहे थे, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कुछ विचार किया जाए। तो करो विचार। तो कहां से विचार शुरू करें? बोले सामने एक पीपल का पेड़ खड़ा था, उसी पर विचार करते हैं गुरुदेव। ये जो सामने खड़ा है ये क्या है, इसका निर्णय होना चाहिए। इतना बड़ा सा खड़ा है ये। गुरुजी ने कहा कि इसका नाम है पीपल का पेड़। नाम क्या है? पीपल का पेड़। संस्कृत में उसी को अश्वत्थ कहा है। अच्छा गुरुदेव ये बताइए कि ये पीपल का पेड़ का स्वरूप क्या है? वास्तव में ये पीपल के पेड़ के जो सामने खड़ा है इसका अस्तित्व क्या है, स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तेरे को आंख से जो दिखाई पड़ रहा है वो पीपल का पेड़ हरा और इतना बड़ा, और जिसको नाम हमने दिया है कि ये पीपल है, नाम और ये रूप, बेटा ये सब मिथ्या है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी कैसी बात कर रहे, इतना बड़ा दिख रहा है सामने और आप कहते हो कि मिथ्या है। हां बेटा ये दिख रहा है फिर भी ये मिथ्या है, दिखता हुआ अनुभव में आता हुआ कैसे मिथ्या माने हम इसको? तो गुरु ने समझाया, बेटा कई बार दिखता हुआ भी मिथ्या हो जाता है। दिखता तो है मरुभूमि में जल, लेकिन क्या जल की उपलब्धि होती है? दिखता तो है सीपी में चांदी, क्या चांदी की उपलब्धि होती है? रेल के पटरी में खड़े होकर, बीच में खड़े होकर दूर देखो तो दिखता क्या है कि बिल्कुल आगे जाकर ये पटरियां छोटी हो गई और दोनों आपस में मिल रहे हैं। क्या वो छोटी हो जाती है रेल की पटरी आगे जाकर, संकरी हो जाता है? जहां वो खड़ा है वहां जितनी दूरी है, जहां तक उसकी आंख पहुंची है वहां तक भी उतनी ही समान अंतर दूरी में रेल की पटरियां हैं, लेकिन दिखती क्या है? जहां मैं खड़ा हूं यहां काफी दूर खड़े हैं पटरी आपस में और आगे जाकर ये जुड़ गए हैं। दिखता तो है, क्या ऐसे ही होते हैं? दिखता तो चंद्रमा तुम्हारी थाली के बराबर है, क्या वास्तव में चंद्रमा तुम्हारे थाली की जितना ही है? उसका आकार के थाली के बराबर ही है, है? अरे भाई दिखता क्या है, होता क्या है, इस पर विचार करो। है क्या चीज जो दिख रहा है? स्वप्न में भी सब पदार्थ दिखते हैं, क्या वो सत्य होते हैं? रस्सी में सर्प दिखता है, क्या सत्य होता है? ट्रेन में बैठा हुआ यात्री को दिखता है सारे पेड़ दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं बाहर के, क्या वो सत्य होता है? दौड़ते हैं वो पेड़ मकान। बच्चा चक्कर लगाता है घूमता है और उसके बाद खड़े होता है तो सारा संसार सृष्टि घूम जाती है, उसको दिखता है सब घूम रहे हैं, क्या सत्य होते हैं वो सब? कई उदाहरणों से गुरु ने समझाया कि बेटा दिखता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सब मिथ्या है। ये दृष्टम तन्नष्टम, मिथ्या शब्द का अर्थ ही होता है स्व अधिष्ठान बाद मानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जहां जो वस्तु जिस रूप में दिख रहा है वही वो वस्तु उस रूप में उपलब्ध न होवे उसका नाम है मिथ्या। ज्ञान निवर्तत्वम मिथ्यात्वम, ज्ञान के द्वारा यदि वो बाधित होता है तो उसका नाम मिथ्या है। इसलिए बेटा निश्चय कर लो, ये सारी प्रक्रियाओं के आधार पर ये जो सामने खड़ा हुआ पीपल का पेड़ दिखता तो है लेकिन ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, निश्चय कर लिया शिष्य ने। इतने में थोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे, उधर से एक हाथी आ रहा था। हम सुनाते हैं ये दृष्टांत, हमेशा सुनाया है। सामने से एक हाथी आ रहा था, उस हाथी के ऊपर एक महावत बैठा हुआ था। इतने में शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुदेव ये सामने क्या है, बड़ा सा है, चलता फिरता आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये हाथी है, इसको हाथी बोलते हैं, पृथ्वी में सबसे बड़ा जानवर है, जीव है, ये हाथी है। अच्छा, इसको हाथी बोलते हैं, बताइए गुरुदेव इसका स्वरूप क्या है। ये हाथी के बारे में जो कहा, इसका स्वरूप क्या है, सत्य है कि मिथ्या है, कि इसको क्या निश्चय किया जाए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये हाथी भी पीपल के पेड़ की तरह ही मिथ्या है, दिख रहा है, दिखता हुआ वस्तु मिथ्या होता है। बोले ये हाथी चलता हुआ आ रहा है, फिर भी इसको मिथ्या कह रहे महाराज। बोले तुमको दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो मिथ्या है वो, क्योंकि हाथी ये नाम, मोटा सा ये शरीर रूप, ये कब तक रहेगा, वो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, हाथी की आयु लंबी मानते हैं वो तो। कितने आखिर, कभी न कभी ये आकार और ये नाम दोनों नष्ट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं कुछ दिन के बाद। आज तुमको मिल रहा है, कल तुम्हारे बेटे को न मिले, तुम्हारे नाती को न मिले, पोतों को न मिले। तुम्हें जिस रूप में मिला है उसी रूप में मिलेगा उन सबको। सत्य तो उसको कहते हैं कि त्रिकालावादित्वम, तीनों काल भी जिसका बाद न हो उसको सत्य बोलते हैं। यदि एक ही किसी समय में दिखे, किसी समय न दिखे, किसी समय मिले, किसी अन्य समय में न मिले, किसी देश में मिले, किसी और देश में न मिले, किसी काल में मिले, किसी और काल में न मिले, उसको मिथ्या कहते हैं। बेटा निश्चय कर लो यह अति मिथ्या है। शिष्य ने कहा कि आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि मिथ्या है, मेरा मन तो नहीं मान रहा है। आप लोगों का मन मान रहा है, इतने दिन से वेदांत तो सुनते हुए है, मान रहा है तो ठीक है भाई। हाँ, तुम्हारी पत्नी मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारा पति मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारा बेटा मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारी बेटी मिथ्या है कि सत्य है, तुम्हारे पहना हुआ कपड़ा मिथ्या है कि सत्य है, तुम जिस समय भूख लगता है और सामने थाली होती है भोजन की, वो मिथ्या है कि सत्य है। समझ में नहीं आएगी, मान लो और दूसरी बात है, समझ में नहीं आएगी। उसने कहा गुरुदेव आप कहते हो तो हम मान लेते हैं, क्योंकि गुरु की वाक्य है, मानना ही चाहिए। इतने में वो शिष्य उसका निश्चय कर रहा था, मान ही रहा था कि हाथी मिथ्या है, पीपल का पेड़ भी मिथ्या है, हाथी भी मिथ्या है। इतने में वो महावत हाथी नजदीक आ चुका था और महावत ने जोर से कहा, ए महात्माओ रास्ता छोड़ो, हट जाओ रास्ते से, क्योंकि यह हाथी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, थोड़ा सा उन्मत्त भी हुआ है, और हम हालांकि कोशिश कर रहे हैं इसको नियंत्रण करने का, लेकिन हो सकता है सामने आ जाओ तुम और ये उठा के पटक के फेंक देवे, अनर्थ हो जाए, हट जाओ रास्ता छोड़ो। गुरु ने कहा कि बेटा ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, यह हाथी थोड़ा सा उन्मत्त है, हटने के लिए कह रहा है महावत, चलो रास्ता छोड़कर उतरते हैं रास्ते से नीचे। शिष्य कहने लगा गुरुजी क्या बात करते हो, अभी अभी निश्चय कर दिया कि यह मिथ्या है, आपने ही निश्चय किया है कि यह मिथ्या है, अब अभी कहते हो कि यह हमको मार डालेगा, छोड़ के रास्ता छोड़ के हट के निकल जाओ कह रहे हो, कि मिथ्या वस्तु हमारा क्या बिगाड़ेगा है। यदि यह हाथी बिल्कुल मिथ्या है तो सामने आ भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, मिथ्या वस्तु किसका क्या बिगाड़ सकता है भैया, बिगाड़ सकता है। फिर गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ के निकल जाओ, हट जाओ, न तो ये बड़ा नुकसान कर देगा, मार डालेगा, उठा के पटक डालेगा। तो शिष्य को समझ में नहीं आ रही है, गुरुजी कह रहे हैं कि निकलो, शिष्य कह रहा है कि क्यों निकले महाराज, जब मिथ्या निश्चय हो गया है तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, स्वप्न मिथ्या है तो स्वप्न का भाग हमारा क्या बिगाड़ेगा भाई, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में आया हुआ बाड़ी पूर हमारा क्या बिगाड़ेगा? स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में आग लग जाता है तो हमारा क्या बिगड़ता है? मिथ्या वस्तु किसका क्या बिगाड़ सकता है? हाथी हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम क्यों रास्ता हटकर रास्ता छोड़कर झिड़े चले? शिष्य तो माना नहीं। गुरुजी इतने में हाथी नजदीक आ रहा था, महावत ने कहा कि अरे रास्ता से हट जाओ, तो गुरुजी तो हट गए, नीचे उतर गए। शिष्य तो निश्चिंत है कि मिथ्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, वो पक्का वेदांती हो गया था, वो तुम्हारे जैसे ही हा पक्का वेदांती हो गया था। इतने में हाथी नजदीक आया और उसको सूंड से पकड़ लिया, लपेट लिया, सूंड से उठाया और पटक दिया। गुरुजी जिधर थे उदय सड़क के नीचे, उसके तो हाथ पांव टूट गए, रोने लगा, गुरुजी मर गया, हाथी ने पटक दिया उठाकर, मर गया मैं तो, मार डाला इस हाथी ने, आपकी वेदांत तो हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी निश्चय किया हुआ ये हाथी मिथ्या है, ये मिथ्या हाथी भी इस तरह उठा के पटक के मार सकता है। हम कैसे समझे आपका वेदांत? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, बोलो, ये समस्या है कि नहीं? अरे भाई, गुरुजी कहते हैं कि अरे बेटा हमने पहले ही कहा था रास्ता छोड़कर हट जाओ। अरे भाई, हाथी मिथ्या है तो हाथी से बचना भी मिथ्या है, रास्ता छोड़कर हटना भी मिथ्या है। मिथ्या वस्तु के साथ सारे के सारे व्यवहार करो, मिथ्या तेन व्यवहार करो तो सारा व्यवहार सही हो जाता है। व्यवहार सही होता है, परमार्थ सही नहीं होगा। मिथ्या वस्तुओं के साथ मिथ्या निश्चय पूर्वक मिथ्या ही व्यवहार करोगे तो व्यवहार सही होता है। देखो ये हमारे सही हो गया, मिथ्या हाथी, मिथ्या पागल, मिथ्या सड़क से नीचे जाना, मिथ्या बच गए, और सब काम ठीक हो गया कि नहीं, बोलो। और तू अपने आप को सत्य मानता रहा और हाथी को मिथ्या मानता रहा, तो सत्य और मिथ्या का ही तो फाइट होता है जगत में। आज तक आपके सामने हो क्या रहा है? यही हो रहा है। कुछ को मिथ्या मानते हो, कुछ को सत्य मानते हो, सत्य और मिथ्या के बीच में समन्वय नहीं हो पाता है, विरोध हो जाता है, तब फिर बैठकर रोने लग जाते हो। महात्मा ने कहा था ये मिथ्या है और इसका घटना ऐसा हो गया, महात्मा ने कहा था मिथ्या है, इसकी घटना इस तरह हो गई, फिर रोने लग जाते हैं। तो मिथ्या प्लस मिथ्या इज इक्वल टू मिथ्या, हम तो ये गणित पढ़ाते हैं भाई, मिथ्या प्लस मिथ्या आजकल टू मिथ्या। रिजल्ट सही आया कि नहीं, बोलो। रिजल्ट गलत है। 10 नंबर का यदि होगा ये मैथ तो 10 में 10 नंबर मिलेगा कि नहीं? मिथ्या प्लस मिथ्या आजकल टू मिथ्या, 10 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, तो आंसर यदि तुमने आजकल टू मिथ्या लिख दिया तो 10 के 10 तुम पास हो जाओगे कि नहीं? और यदि तुमने मिथ्या प्लस मिथ्या इक्वल टू मिथ्या की जगह सत्य लिख दिया होता तो तुम फेल हो जाते, क्योंकि मिथ्या, और दूसरा क्वेश्चन था मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू, बोलो आओ, मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन ही रहूंगा, क्योंकि मिथ्या का और सत्य का प्लस हो सकता है, बताइए है? मिथ्या का और सत्य का कोई प्लस पॉइंट होता है? प्लस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो उसका आंसर तुम चाहे मिथ्या दोगे तो भी वह गलत हो जाएगा, सत्य दोगे तो भी गलत होगा। मिथ्या प्लस सत्य इक्वल टू मिथ्या यदि तुम दोगे तो भी वो तुम्हारा आंसर गलत होगा। तुमको ये विचार नहीं कर सके तुम कि क्वेश्चन गलत है, तुम आंसर को देने के लिए चेष्टा कर रहे हो, गलत क्वेश्चन का आंसर देने की चेष्टा क्यों करना है ना? गलत क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करेगा तो सत्य कहेगा तो भी गलत होगा, मिथ्या कहेगा तो भी गलत होगा। उसको तो सबसे बढ़िया एक कह देना चाहिए, नंबर लेना हो तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन ही गलत है, तब तो वो पास भी हो सकता है। तुम सत्य कह दोगे तो भी फेल हो जाओगे, मिथ्या कहोगे तो भी। क्यों? क्योंकि मिथ्या का और सत्य का प्लस पॉइंट होता नहीं। और हम कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं आज तक। आज तक हम यही कर रहे हैं, मिथ्या और सत्य का प्लस करना चाहते हैं, इसलिए रिजल्ट हमेशा गलत हो जाता है, हमेशा फेल हो जाते हैं। अखंडानंद जी पास हो गए, तुम क्यों नहीं पास हो रहे हो? हैं? प्रेमपुरी जी पास हो गए इस हिसाब में और तुम क्यों नहीं पास हो रहे हो? बोलो, शंकराचार्य पाठ हो गए, अखंडानंद जी पास हो गए, हैं? बड़े बड़े महात्मा लोग सब पास हो गए और हम क्यों फेल हुए जा रहे हैं? हम ये नहीं कह पा रहे हैं। वो पास हो रहे हैं तो दो कारणों से, मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या, पास हो गए वो, पास हो गए। अखंडानंद जी ने शादी किया, अखंडानंद जी के बच्चे हुए, पास हो गए। फिर भी तुमने शादी की और तुम्हारे बच्चे, तुम फेल होते हो, कारण क्या है? हैं? कर्पाद्री जी ने शादी किया, बेटी हुई, साधु हो गए, पास हो गए, फेल नहीं हुए, तो हम क्यों फेल होते हैं? फिर हम भी शादी कर रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, पैदा करते हैं, फिर भी क्यों फेल होते हैं? जो वो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो वो पास हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, कारण क्या? वह मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या करके पास होते हैं। हम क्या कहते हैं? मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू सत्य। हम रिजल्ट हमेशा सत्य खोजते हैं, मिथ्या प्लस का रिजल्ट हम हमेशा सत्य खोजने लगते हैं तो हम पास हो, इसलिए हम हमेशा समझाते हैं। एक उदाहरण देकर, कोई कपल थे, पति पत्नी थे, उसकी एक जवान बेटी थी। दोनों पति पत्नी वेदांत सुनने आया करते थे, शायद आत्मानंद के वेदांत सुनते हो, कभी कभी मोहनानंद जी के भी सुनते हो, विशुद्धानंद जी के भी सुनते हो, वेदांत सुनने आया करते थे नियमित रूप में। और वहां सुन लिया कि सब जगत मिथ्या है, हाँ, बाप भी मिथ्या है, मां भी मिथ्या है, बेटा भी मिथ्या है, बेटी भी मिथ्या है, जगत ही मिथ्या है, नाम रूप दोनों मिथ्या है, दोनों ने सुन रखा था। अब उसकी बेटी जवान हो गई थी,
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Chadaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, अभी हम जिस दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, उनका नाम चड़ैयनार है। तमिल शैव भक्त साहित्य, धर्म और दर्शन के इतिहास में सुंदरकृत तिरुतुंड तोगई का विशेष महत्व है। इसमें उन्होंने अपने युग से पूर्व के कथा तथा अपने युग के प्रसिद्ध 63 संतों के नामों का उल्लेख किया है। निसंदेह सुंदरल के पूर्व और उनके समकालीन सहस्रों भक्त संत रहे होंगे, पर युगों से प्रसिद्ध तथा अपने समाज में समादृत जिन 63 संतों का वर्णन सुंदरल ने किया है, उनके विषय में 11वीं शताब्दी में तिरुमलई ग्रंथों के संपादक नंबियांडार नंबी ने 79 पदों में गायन किया है। पेरियपुराणम के रचयिता चक्किलर ने 4286 पदों में इन 63 प्रभु सेवकों के चरित की रचना की। सुंदरमूर्ति नायनार प्रभु के सखा के रूप में जाने जाते हैं। साख्य भाव की भक्ति इनके जीवन का लक्ष्य था। इनका जन्म नावलूर में आदिशैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चड़ैयनार था। सुंदरल को जन्म देकर शैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करके जो योगदान चड़ैयनार ने किया, उसके लिए पुराणकार इन्हें सादर स्मरण करते हैं। सुंदरल का बचपन का नाम नंबियारूर था। इन्होंने भगवान शिव को अपनी प्रेमिका के पास दूत बनाकर भेजा था। श्रेष्ठ भक्त चेरमान पेरमाल की मित्रता इन्हें प्राप्त थी। ऐसे सुंदरमूर्ति को इस जगत में जन्म देने वाले इनके पिता चड़ैयनार धन्य हैं, इसलिए उन्हें एक संत के रूप में उन 63 संतों के बीच गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை மகாமண்டலேஸ்வர் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
4: ஓ ஓ ஓ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी, इस स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की श्रृंखला, 13 दिवसीय यह श्रृंखला का आज चौथा दिवस, चतुर्थ श्लोक अभ्यास के लिए चौथा श्लोक। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा

प्रथित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डो प्यणुरपि च धूमोऽग्निरचल पटो वा तन्तुर्वा परिहर किं घोरशमनम् वृथा कण्ठक्षोभम् वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजम् शम्भोर्भज परमसौख्यम् व्रजसुधि मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रपणितौ।

0: आदिभूर शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शिवा, हे शंभो, सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदाह। क्षुद्र व्यक्तियों के लिए, क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत व्यक्ति हैं, और मेरे दृष्टि में वे लोग भी क्षुद्र ही हैं। ये वाक्य पर ध्यान देना, क्षुद्र व्यक्तियों के लिए क्षुद्र फल देने वाले संसार में बहुत से क्षुद्र व्यक्ति भी हैं, लेकिन न मन्ने सोपने वा, मुझे उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया वो क्षुद्र फल की कामना स्वप्न में भी नहीं होती है। जागृत में होने की तो बातें छोड़ दो, तदनुसरणम तत्कृत फलम। फिर तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव पूछे शंकराचार्य जी से, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूं महाराज, हरि ब्रह्मादीनाम अपि निकट भाजाम असुलभम। आपकी चरण की सेवा करने का अवसर विष्णु और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता। इंद्र वरुण की तो बातें छोड़ दो, और संसारियों की तो और बात छोड़ दो। जिसकी चरण सेवा करने का अवसर हरि ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं है, मैं तो उसी चरण की सेवा करना चाहता हूं। बस वो चरण है, चिरम याते शंभो। हे शंभो, मैं तो यही चाहता हूं कि दीर्घ काल तक, कब तक? जब तक स्वरूप स्थिति न हो, चिरम संसार में मुझे यही दो चीज चाहिए। एक तो मेरा लक्ष्य है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति की तरह शिवम वेद शिवैव भवति। आपको जानने वाला आप ही हो जाए, आपकी और मेरी पृथक अस्तित्व न रहे रंच मात्र भी। और यदि आपके स्वरूप मोक्ष, स्वरूप उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारण से आपसे भिन्न रहना पड़ेगा, तो जब तक भिन्न रहूंगा तब तक मैं यही चाहता हूं कि आपके तव पदाम्बोज भजनम, नित्य निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। या तो आपसे अभिन्न हो जाऊं, आपसे भिन्न का मेरा अस्तित्व न रहे। जो वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, और यदि अलग रहता हूं तो हमेशा आपकी सेवा, चरण की सेवा करने की मेरी इच्छा है, चिरम याते। इसके अलावा मेरी किसी और कोई इच्छा नहीं। अरे भाई, जब तक संसार में रहेगा, व्यवहार में तो सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तुझे जब तक शरीर रहेगा, प्राण रक्षा के लिए भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और उस भोजन की याचना, भिक्षा तुझे करना हो, करना पड़ेगा। और भिक्षा की याचना करने के लिए तो संसार में गली मोहल्लों में तुझे जाना ही पड़ेगा, और यदि किसी से कुछ चाहिए तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति भी करनी पड़ेगी। संसार में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते हैं प्रहलाद का पौत्र, क्या नाम था प्रहलाद का पौत्र, बलि था, पुत्र था विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि, पौत्र, और हिरण्यकश्यपु का प्रपौत्र। कहते हैं कि वो उसने बड़ा भारी यज्ञ किया, क्योंकि तीनों लोग उसके अधीन था। अब विचार करो, तीनों लोग बलि के अधीन था तो शिव कहां रहे होंगे, है? तीनों लोक का वो राजा था तो शिव कहां रहे होंगे, तो शिव भी तो उसी के अधीन रहे कि नहीं? अरे भाई, शिव तीन लोक से परे हैं भाई, हाँ, शिव तीन लोक से परे होने के कारण बलि ने तो तीन लोक की शासन अपने हाथ में ले ली थी, तीन लोक का मालिक था। शिव तो तीन लोक से भी परे है ना, इसीलिए बलि के साम्राज्य के अंतर्गत अधीन में शिव नहीं है। ये बात अलग है कि शिव का, बलि का साम्राज्य भी शिव का ही है, लेकिन बलि केवल तीन लोक का साम्राज्य है, मालिक है, लेकिन भगवान शिव तो अनंत लोक का मालिक है, इसलिए शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। फर्क किसको पड़ा? देवताओं को फर्क पड़ा। तब उन लोगों ने षड्यंत्र किया, हाँ, भगवान विष्णु के पास गए, महाराज हमारा राज्य जो है बलि ने कब्जा कर लिया, और तीनों लोग बलि ने कब्जा कर लिया, परिणाम यह हुआ कि हमको रहने का कोई ठिकाना नहीं, और असुरों के राज्य में रहना पड़ रहा है, उसके कहे अनुसार हमको अनुशासित होकर काम करना पड़ रहा है। इसलिए आप कृपा करो, हमें तीनों लोक की राज्य की आवश्यकता नहीं है। पांडवों ने कहा था ना, हमको पूरा हस्तिनापुर के सिंहासन नहीं चाहिए, क्या कहा था, हम पांच भाई हैं, छोटा हस्तिनापुर के एक कोने का पांच गांव दे दो, हम उसी में हम गुजारा कर लेंगे, पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन हमको नहीं चाहिए। दुर्योधन उस साम्राज्य का राज्य करता हो तो करे, हमको राज्य भोग की कोई आकांक्षा नहीं है। ये प्रस्ताव दुर्योधन के सामने गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हम उनको पांच गांव की बात छोड़ दो, एक सुई रखने बराबर की भी जगह नहीं देंगे। इसी तरह देवताओं ने विष्णु को कहा, महाराज तीनों लोक की हमें आवश्यकता नहीं है, वेद ने, शास्त्र ने, आप लोगों के अनुशासन ने हमारे लिए जिस भूमि की, जिस लोक की परिकल्पना की है, द्युलोक, हमको वही चाहिए, बस स्वर्ग हमको प्राप्त हो जाए, बाकी भूलोक और पाताल आदि सब जिसकी है वो भोगे, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको हमारा राज्य चाहिए। क्या करें महाराज? अब लड़ने जाते हैं तो बलि उसी का भक्त है, तो अपने भक्त से क्या लड़ें? तो कहते हैं उसी समय वह यज्ञ कर रहा था, भगवान ने विचार किया कि जाते हैं, यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठा है तो यज्ञ की पूर्णता दान करने में ही है। तो हम ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे, कुछ मांगेंगे और देगा वो, कहेगा कि क्या चाहिए तुमको, तो हम मांग लेंगे और तुम्हारा राज्य हम तुमको दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। तो भगवान विष्णु ने नाटक किया, आप लोगों को पता ही है ना, आप लोगों के सामने किया है ना, है सामने किया, हाँ नाटक किया उन्होंने, बावन बन गए वो। उनका नाम बावन क्यों हुआ, कहते हैं उंगली से नापो तो केवल बावन उंगली, इतनी उनकी हाइट थी, कितना बावन उंगली, चार आठ बावन हाइट, हाइट कितना हुआ होगा, हाँ इतने थे वो, छोटे से थे। तो वो चले गए और बलि ने कहा कि अच्छा ब्राह्मण बालक तुम क्यों आए हो। बोले हमने सोचा कि तुम यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़े मालिक हो तीनों लोक की, और हम ब्राह्मण हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई निजी भूमि हो और जहां हम आसन बिछाएं और गायत्री का अनुष्ठान करें, क्योंकि दूसरे के भूमि में यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो जमीन जिसकी है अनुष्ठान का आधा फल तो जमीन वाला ही ले जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान शुद्ध हो, पूर्ण हो, इसलिए हमको थोड़ा जमीन दे दो। बलि ने कहा कि कितनी चाहिए, नहीं नहीं हम बड़े संतोषी हैं, हम तो द्वापर युग के ब्राह्मण हैं, कलयुग के नहीं। कृष्ण किस युग के ब्राह्मण थे बलि के सामने, हैं द्वापर युग के ब्राह्मण थे ना, तो कृष्ण माने कृष्ण भगवान नारायण जो कहो, बलि तो द्वापर युग का था। तो हम ब्राह्मण द्वापर युग के ब्राह्मण है, कलयुग के नहीं है, बहुत थोड़े में संतोष करते हैं, हमको तीन पग जमीन दे दो। बोले और ज्यादा मांग, हमारा तो तीनों लोक का साम्राज्य है, तीन पग क्या मांगता है? गंगा जी के पास जाकर केवल तीन बूंद पानी लेना कोई समझदारी है क्या? भरो बाल्टी जितना भरना हो। भगवान ने कहा कि नहीं, लोभ पापस्य कारण, हमको उतने ही है, जितने संतोषात अनुत्तम सुखलाभ, जितना कम हो उतना ही सुखी और जितना ज्यादा हो उतना ही दुखी। सांसारिक पदार्थों के बारे में ये बिल्कुल सत्य घटना है, सांसारिक पदार्थों का जितना ज्यादा संग्रह होगा उतने ही ज्यादा दुख होगा, और सांसारिक पदार्थों का जितना कम प्रयोग होगा, उपयोग होगा, उतना ही आनंद, उतना ही सुख होगा। भगवान ने कहा कि हमको तो तीन पग हो गया काम, और क्या, हमको तो भजन करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है तीन पग ले लो, और भगवान ने अपने तीन पग से सब कुछ ले लिया और ले जाकर किसको दिया, देवताओं को दे दिया, ले वो तुम्हारा है तुम ले लो महाराज आपके लिए। बोले हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है, राजा बलि क्या था, वह तो क्षुद्र जीव है, राजा बलि हालांकि अन्य साधारण जीवों के दृष्टि से वो बड़ा महान हो सकता है, लेकिन भगवान और शिव के सामने राजा बलि तो एक क्षुद्र जीव है, और राजा बलि जो देगा वो सब क्षुद्र ही तो हैं, पृथ्वी और पृथ्वी लोक का जो भी वस्तु हैं वो सब क्षुद्र ही तो हैं, स्वर्ग स्वर्ग के पदार्थ, इसलिए तो उपनिषद ने कहा है, यद्यथेह कर्मचीत लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचीत लोकक्षीयते। अपरोक्षानुभूति में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं निर्मल वैराग्य का लक्षण, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम अनित्य भोग वस्तुनि, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर्यंत सारे लोक लोकांतर के जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य वस्तु है, क्योंकि वह भोग्य है, भोक्ता के द्वारा भोग्य है। किसी भोक्ता के द्वारा जो भोग्य होगा वो भोग्य क्षुद्र ही होगा, अनित्य होगा। यथैव काकविष्टायाम, जैसे एक मनुष्य को एक तरफ रसपुरी रख दो और एक तरफ कौवे का विष्टा रख दो तो पहले कौन खाएगा, कौवे का विष्टा खाएगा कि रसपुरी खाएगा? है कौवे के विष्टा को देखना भी नहीं चाहेगा, खाएगा है। यथैव काकविष्टायाम, ये अपरोक्षानुभूति का श्लोक है, तद ही वैराग्यम तद ही निर्मलम। जब किसी को जब इस प्रकार की दृष्टि बनती है, ब्रह्मादि स्थावरांतम जितनी भी भोग्य वस्तुएं ये सब अनित्य हैं, कैसे तो बोले यथैव काकविष्टायाम, वो कौवे के विष्टा के प्रति मनुष्यों की जो दृष्टि बनती है वैसे ही दृष्टि भोक्ता को इन पदार्थों में बन जाए तब वो निर्मल वैराग्य कहलाएगा, तभी वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहलाएगा। तब बलि एक क्षुद्र राजा है, ठीक है, हमने उस दिन प्रवचन में कहा था ना, विराट के सामने हम तो क्षुद्र हैं, कुछ भी नहीं है, भले ही हमारे शरीर के जीव कण रक्त कणों के जीवों के सामने हम विराट हैं, हमारे जो मुख में कफ निकलता है उसमें कितनी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं कि नहीं, उनके दृष्टि में तो हम विराट हैं कि नहीं बोलो, हैं? उनके लिए तो हमारा तो शरीर तो क्या तीनों लोक हैं, 14 भुवन है, उन जीवों के लिए हमारा शरीर तो 14 भुवन है, वो 3 लोक 14 भुवन एक ब्रह्मांड है, उनके सामने हम भले ही महान हो लेकिन विराट के सामने तो हम क्षुद्र हैं कि नहीं। इसी तरह परमात्मा भगवान शिव के सामने तो जितने भी बलि हो चाहे कोई हो वो सब क्षुद्र जीव हैं, और वो जीव खुद ही क्षुद्र हैं, तो वो जिन राज्यों का जिन वैभव का भोग कर रहे हैं वो भी शिव जी के दृष्टि में तो क्षुद्र ही हैं, और शिव जी की दृष्टि में यदि क्षुद्र हैं तो असली शिव भक्त के दृष्टि में भी वे सब क्षुद्र ही हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं इस संसार में सहस्रम वर्तन्ते जगति, जगत में हजारों हैं विबुधा, बड़े समझदार हैं, बड़े दाता हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्षुद्र फलदा, तुच्छ फल देने के लिए तो हजारों हैं, सांसारिक भोग्य पदार्थ प्रदान करने वाले तो बहुत मिलते हैं, हाँ संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज मेरे सामने तो मेरे लिए तो उन सब राजाओं के द्वारा दिया गया पदार्थ बिल्कुल तुच्छ है, उनके उन राजाओं को उन दाताओं को और उनके दिए हुए पदार्थों को मैं तो स्वप्न में भी उसकी कामना नहीं करता, जागृत में कामना करने की तो कोई बात ही छोड़ दो, సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధ క్షుద్ర ఫలద నమన్నే స్వప్నే వా తదనుసరణం తత్కృత ఫలం. నా ఉనికి స్తుతి కర్నే జాఊంగా మే నా ఉనికి ద్వారా దియే గయే పదార్థ కి ఆకాంక్షా కరుంగా. ఫిర్ తుమ్ క్యా చాతే హో? హరి బ్రహ్మాదీనా, మే తో వో చాతా హూ జో విష్ణు ఔర్ బ్రహ్మా జో దునియా మే బడే మహాన్ కహలాతే, లేకిన్ మహాన్ హోనే పర్ భీ ఉన్కో భీ ఆప్కి చరణ్ కి సేవా ఉపలబ్ధ నహీ హై. ఔర్ ముజే పతా హై आपकी जो धर्म पत्नी पार्वती है ना, वो भी कभी कभी साड़ी की कामना हो तो आपके चरण की सेवा करती है. हंस लिया ना तुमने, कम से कम इतना तो हंसे हो ना, शायद हंसने का मौका और जगह ना मिलता है, इतने तो हंसती हो ना तुम लोग. कभी कोई एक ज्वेलरी की आवश्यकता हो तो शिव की सेवा करने के लिए शायद नजदीक जाए. चिरम चौबीसों घंटा तो शायद पार्वती भी शिव सेवा नहीं करेगी. करेंगे है? नहीं करेंगे मुझे लगता है. और हरि ब्रह्मा की तो बातें ही छोड़ दो. मैं पार्वती को, हरि ब्रह्माओं को भी, इन लोगों के लिए अति दुर्लभ आपके चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं. आपके चरण में बैठकर चरण की सेवा करना चाहता हूं. वो भी कोई एक बार या दो बार की बात नहीं, चिरम याते. चिरम याते का याचे का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी जीव भाव बनी रहेगी, जब तक, तब तक मैं आपकी चरण की सेवा करता रहूं. और जिस दिन जीव भाव मेरी छूट जाएगी, उस समय मुझे किसी की सेवा करनी नहीं पड़ेगी, न करानी पड़ेगी. न करनी पड़ेगी, न करानी पड़ेगी. अच्छा भाई, शिव जी को अपनी चरण की सेवा करानी पड़ती है कि नहीं है? कभी कभी उनके टांग दुखते हैं कि नहीं? आप लोगों का दुखता है कि नहीं? जब टांग दुखता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि नहीं कोई आके टांग दबा दे? है? होती है ना, जब दुखता है तो. कोई काम ज्यादा करना पड़े, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़े है? तब मन में तो होता है. भले ही वो साधन उपलब्ध न हो, आपकी बहु आज्ञाकारी होगी तो बेटी जरा ये टांग दुख रहे हैं थोड़ा दबा देना तेल लगा के कहोगी. या कोई आज्ञाकारी सेवक होगा, नौकर होगा, कर्मचारी होंगे, बाई होगी, उसको कहेंगे आज तो बहुत दर्द हो रहा है जरा दबा दे है? लेकिन भगवान शिव के मन में कभी इच्छा होती होगी कि नहीं? अरे भगवान शिव के मन में कोई मेरी सेवा करे ये इच्छा नहीं होती है. फिर शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि मुझे आपकी निरंतर चरण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूं. इसका मतलब है कि भक्त भगवान की सेवा करे ये भगवान नहीं चाहता, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं. क्योंकि सेवा से, भक्त की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं. समझ गए कि नहीं? भक्तों की सेवा से भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं. और भगवान यानी परमात्मा भक्तों से यह अपेक्षा रखता ही नहीं है कि भक्त मेरी सेवा करे, नहीं रखता है. फिर क्यों करते हैं सारे भक्त भगवान की सेवा है? क्योंकि यह कहा गया है भक्तों का ही हित होगा. भगवान की सेवा करके भक्तों का ही हित होने के कारण भगवान भी यह चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा करे, क्योंकि मेरी सेवा करेगा तो उसी का हित होगा. मेरा तो कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। आप तो काम से का स्प्रिया, उपनिषद ने कहा जो आप तो काम है उसकी क्या स्प्रिया होगी, परमात्मा तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, वो भक्तों की सेवा की अपेक्षा क्यों रखेगा। फिर क्यों बार बार कह रहे हैं परमात्मा कर्म करो और मुझे दो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, कर्म करो और मुझे अर्पण करो, बार बार क्यों कहते हैं। परमात्मा को हमारे कर्मों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, परमात्मा खुद निकम्मा है क्या, कमा के खा नहीं सकता है क्या, है कमा के नहीं खा सकता है क्या, परमात्मा को क्यों ये कहना पड़ा कि खाने से पहले तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, ये करके खाओ, ये क्यों करना पड़ रहा है उसको। इसीलिए कि उस अन्न में शुद्धि हो, उस अन्न से भगवान की तृप्ति नहीं होगी। तुम जो कटोरी में थोड़ा सा, छोटे से कटोरी में थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर भोग लगाओगे, तुलसी का पत्ता रख के, क्या वो पेट भर जाएगा उसका, कभी सोचा है, है? तुम्हें दूध पीना हो को शाम को तो पूरा गिलास चाहिए फुल।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Puna isi Soma Skand ko Bhagavan Vishnu se Indra ne praapt kiya. और इंद्र को प्रसन्न करके मुचुकुंद ने प्राप्त करके दक्षिण भारत में इसकी स्थापना किया। मुचुकुंद के विषय में भी शिवभक्त चरित्र में एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर कैलाश से नीचे भ्रमण करते हुए नंदनवन में आए। नंदनवन में आने के बाद भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बैठ करके पार्वती को अनेक प्रकार से आत्मज्ञान की कथा सुनाने लगे, भगवत चर्चा शुरू कर दिया। जब भगवत चर्चा कर रहे थे तो संयोग से काला मुख का वानर आया और वानर आकर के पेड़ों पीधा उधर घूमने लगा और बाजू में बिल वृक्ष के पेड़ थे। जब बंदर इधर उधर घूमता तो उसके पैरों के चोट से कुछ हाथ से बिल्व पत्ते नीचे गिर के गिरते जाते। भगवान शंकर जब तक आत्मज्ञान उमा को सुना रहे थे तब तक लगभग 1008 बिल्व पत्र गिरते रहे। भगवान शंकर ने कहा, देखो भवानी, 1008 बिल्व पत्र इस वानर के अनजाने से पत्ते गिरे हैं और सौभाग्य से आज प्रदोष है। प्रदोष बोलते हैं प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी जो तिथि होती है, द्वादशी से विद्या होती है, उसका नाम प्रदोष है। प्रदोष काल था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उस वानर को संकेत से बुलाया, उसे वरदान दिया कि जा तू धरती पर 1008 वर्ष तक राज्य करेगा। इस वरदान को सुनने के बाद वह वानर रोने लगा कि शास्त्रों में बतलाया है कि आपका दर्शन होने के बाद मोक्ष मिलता है और आप मुझे राज्य प्रदान कर रहे हैं। राज्य में अनेक प्रकार के बंधन हैं, आसक्ति होती है, कामना वासनाएं हैं। जैसे अग्नि में हम जितना घी डालते हैं उतनी ही लपटे बढ़ती जाती है, अग्नि शांत नहीं होती है। ऐसे राज्य के भोगने से और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह तो हम सभी लोगों की आत्मानुभूति है। बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, न जाने कितने भोगों को हमने भोग लिया, फिर भी आंखें भी अतृप्त है, कान भी अतृप्त, जीभ भी अतृप्त। यदि आंख एक बार सौंदर्य युक्त पदार्थ को देख लेती, पकड़ लेती, तो बार बार जो है ललचाई हुई आंखों से

छीन कर देती है। इसीलिए उपनिषद में जहां पर अन्न शब्द का प्रसंग आता है वहां पर दो व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने किया है, अत्तीति अन्नम और आद्यते भोज्यते इति अन्नम, एक ही शब्द है, दो अर्थ निकाला है। हमारे यहां व्याकरण दर्शन की महिमा है व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा विलक्षण अर्थ निकल आता है। अत्यति अन्नम का अर्थ है जो पूरे संसार को भक्षण करता उसका नाम अन्न है, दूसरा है कि जो खाया जाए उसका नाम अन्न है, पर वास्तव में देखा जाए तो अत्यति अन्न में जो है सटीक बैठता है। अन्न हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है, हम जो है शमशान में जलकर राख हो जाते हैं परंतु वह जस का तस बना रहता। तो उस बंदर ने कहा कि भगवान ये जो आपने राज्य का वरदान दिया इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तू हमारी आज्ञा मान और तुझे बहुत जल्दी मोक्ष मिलेगा, तो जो है हमारे भक्तों से प्रीति करना, भगवान विष्णु की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना से तुझे सोमास्कंद नामक लिंग की प्राप्ति होगी, उसके बाद तू मुझे मरने के बाद सयुज मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही जो बानर था मरने के बाद मुचकुंद बना, मुचकुंद बनने के बाद जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के हाथ से सोमास्कंद प्राप्त किया। जब इंद्र से मुचकुंद की मैत्री हुई, मैत्री होने के बाद इंद्र ने कई बार मुचकुंद से सहायता ली। खैर आजकल तो ऐसा सुनने में नहीं आता है, पर प्राचीन हम पुराणों का अवलोकन करते हैं उसमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिस प्रसंग में इस धरती के बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा स्वर्ग लोक जाकर देवताओं की सहायता करते थे, उसमें से मुचकुंद भी बहुत मशहूर हो गए हैं। जब मुचकुंद देवासुर संग्राम करते करते थक गए तो थकान मिटाने के लिए उन्होंने सुखपूर्वक शयन की निद्रा मांगी। यह तो प्रसिद्ध है, भागवत में भी कथा मिलती है, परंतु शिव चरित्र में कुछ विलक्षण एक कथा मिलती है। यही मुचकुंद जब देवासुर संग्राम में दैत्यों को हरा दिए उस समय इंद्र इनका बड़ा सम्मान करते थे और इंद्र ने कहा कि तुम अपना जो सबसे अभीष्ट प्रिय हो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अधेय नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे अपना सोमास्कंद शिवलिंग प्रदान कर दीजिए। इंद्र बहुत चिंतित हो गए, इस सोमास्कंद को मैं कैसे दे दूं। इंद्र ने बात को घुमा दिया, इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे यह सोमास्कंद नामक शिवलिंग दिया है, यह उनकी धरोहर है, यह यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। मुचकुंद भगवान विष्णु की उपासना में लग गए। 12 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे सोमास्कंद लिंग जो आप इंद्र को प्रदान किया वही मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया। जब भगवान विष्णु की अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद इंद्र के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया है, अब आप मुझे सोमास्कंद लिंग प्रदान कीजिए। इंद्र ने कहा कि कल प्रातः काल ले जाना, इधर जो है रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि तुम ऐसा सोमास्कंद बनाओ कि राजा को पहचान न हो असली नकली का। देखो इंद्र बहुत चतुर राजा माने जाते हैं, और ऐसा कृत्रिम सोमास्कंद लिंग बनाया कि राजा पहचान न पाए कि असली क्या नकली किया, और उस नकली सोमास्कंद लिंग को प्रदान कर दिया।

जब नकली सोमास्कंद लिंग को लेकर के धरती पर आए, दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित करके पूजा करने लगे, उन्हें सपने भगवान शंकर ने बतलाया कि इंद्र ने तुम्हें धोखा दिया है, यह जो है विश्वकर्मा से निर्मित नकली सोमास्कंद लिंग है। पुनः दोबारा गए, बोले कि इंद्र तुमने मेरे साथ छल किया है और यह तो नकली सोमास्कंद लिंग है, मुझे असली दो। इंद्र ने कहा कि ठीक है, कल पुनः ले जाना। इस तरह से 6 बार ठगा है इंद्र ने मुचकुंद को। 7वें बार मुचकुंद को बड़ा क्रोध आया है, बोले कि देखो तुम बार बार मुझे नकली शिवलिंग देते हो और भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं मांगता हूं, और अब की बार धोखा दोगे तो हमारा तुम्हारा हमेशा के लिए बैर हो जाएगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। तब जाकर के इंद्र 7वीं बार अपने प्रिय सोमास्कंद लिंग को मुचकुंद को प्रदान करते हैं। इंद्र को बहुत दुख हुआ, पर अब करते भी क्या, और पूजा का जो नियम था नियम बतलाया कि प्रातः काल उठ करके 650 से पूजा करना। 650 का अर्थ होता है कि पाद्योपाद्यम हस्त्यवर्ग्यम मुख्याचमनियम जितने हैं, स्नान है, माला है, नैवेद्य आरती पर्यंत, ये जो पूजा कहलाती है, इस तरह से पूजा करना। और इस सोमास्कंद के महिमा को बतलाया, वही सोमास्कंद लिंग जिसको कि पहले भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, विष्णु से इंद्र ने, इंद्र केवा मुचकुंद ने, तो वही राजर्षि मुचकुंद ने दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित किया है, उसकी बहुत ही विशेष महिमा यहां बतलाया है। तो भगवान शंकर के चरण की आराधना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यह केवल भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। यह शास्त्र का वचन है कि मनुष्य जैसा भी शुभाशुभ कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए फिर भी जो अच्छे बुरे किए हुए कर्म उनको भोगना ही पड़ता है। परंतु भगवान शंकर के अंदर ऐसा सामर्थ है कि भावी को प्रारब्ध को मेटने में समर्थ है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि मनुष्य अपने मृत्यु के भय को निवारण करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और इससे बहुत कुछ संभव होता भी है। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी की जीवनी है, उनकी केवल 8 वर्ष की आयु थी, परंतु उनके पिता श्री मृकंडु ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी 8 वर्ष की आयु है और आज से 5वें दिन तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। केवल 5 दिन की उपासना से ही भगवान शंकर को महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया और हमेशा के लिए चिरंजीवी बन गए मार्कंडेय ऋषि। तो भगवान शंकर की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य उपासना करने चलता है तो एक बड़ी भारी समस्या आती है। समस्या यह आती है योग क्षेम की। वह सोचता है कि यदि मैं उपासना करूं तो हमारा योग क्षेम कैसे चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कहा है, अनन्यास चिंत्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। दुनिया कोई विश्वविद्यालय कोई भी आदमी इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकता है कि तुम पढ़ो लिखो साक्षर हो मैं तुम्हें नौकरी दे ही दूंगा, कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकता। पर भगवान बिल्कुल ताल ठोंक के कहते हैं
क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतियंतो माम, बस खाली तुम चिंतन करो। योग क्षेम का तो वन मैं खुद करूंगा। नरसिंह मेहता जो गुजरात में बहुत मशहूर हो चुके हैं, भगवान ने उनका सारा योग क्षेम, बहुत लंबी कथा आप सब लोग जानते हैं, कैसे वहन किया। उनके लिए भगवान सेठ बन गए, साहूकार बन गए, न जाने क्या क्या भगवान बन गए। ये कलयुग की घटना है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथा है सुंदर पांडे की। सुंदर पांड्य पांड्य देश के राजा थे। वे भगवान शंकर के हमेशा उपासना करते थे। एक दिन घूमते हुए वह अपने राज्य से बाहर कहीं चले गए, नदी किनारे घूम रहे थे। कुछ वहां पर जादूगर आए, जादूगरों ने कहा, राजन आपको हमारा नमस्कार हो, और आप जिस शिव की कंकड़ पत्थर की उपासना करते हैं वह तो कंकड़ पत्थर न बोल सकता है, जो स्वयं कुछ बोल नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, तो इस पत्थर की उपासना करने से क्या मिलेगा। आप देखो हमारे जादुई छड़ी में यह बल है कि जो चाहोगे सो हम कर सकते हैं। पांड्य सुंदर पांड्य राजा के सामने उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो ये लिंग है इसको हम चाहें तो सोना बना सकते हैं। राजा ने कहा कि यदि तुमने सोना बना दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब बात ही बात में जो है तुरंत उसने मोर पंख से मंत्र पढ़ा और हाथ का शिवलिंग जो है वह सोना बन गया। अब सोना बनते राजा उस जादूगर के चरणों में गिर पड़े, बोले कि तू महान है। और तब से राजा ने भगवान शिव की उपासना छोड़ करके उस नास्तिक मत की दीक्षा ले ली। नास्तिक मतलब शरीर ही आत्मा है, तंत्र मंत्र सब कुछ है, इस कंकड़ पत्थर की पूजा करने से क्या होता है। इधर जो है जिस देश का राजा नास्तिक हो जाए, नास्तिक मत में दीक्षित हो जाए, प्रजा भी वैसी हुई हो जाती है। मंत्री रानी बहुत चिंतित हुए, दुर्भाग्य से चमत्कार के वशीभूत होकर राजा ने शिव भक्ति छोड़ दिया है, अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। परंतु राजा के सामने कौन बोले, पूरे राज्य में जो है नास्तिकों का बोलबाला हो गया, सर्वत्र जो है यह प्रसिद्धि हो गई कि शून्य ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मंत्री ईरानी के सम्मति से उस जमाने के बहुत मशहूर दक्षिण भारत में ज्ञान स्वामी थे, ये भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। उस ज्ञान स्वामी के पास मंत्री जाते हैं और जाकर अपने राजा की अवस्था का वर्णन करते हैं कि हमारे राजा भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु नास्तिकों के चमत्कार से प्रभावित होकर वे नास्तिक मत को स्वीकार कर चुके हैं। चमत्कार का मतलब होता है कार्य कारण भाव। जो चीज सामान्य ज्ञान से समझ में न आए परंतु कार्य कारण भाव से परिवर्तन, उसका नाम है चमत्कार। तो चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने शिव पूजा छोड़ दिया है। जब इस प्रकार से कहा तो ज्ञान स्वामी पांड्य देश के नगर में प्रवेश करते हैं। उनको एक बगीचे मंत्री ने ठहरा दिया और ठहराने के बाद सारा समाचार बता दिया। उधर जो है जब नास्तिकों ने सुना कोई भगवान शंकर का भक्त जिसका नाम सुंदर स्वामी है वो प्रधारा है, और वह जो है राजा से परामर्श करने वाला है, बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर के मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा मारण मंत्र का प्रयोग किया कि अग्नि जलती हुई सुंदर स्वामी के पास आई और उनके कुटिया को जलाने लगी। सुंदर स्वामी ने भगवान शंकर के 10 श्लोकों में प्रार्थना किया, तमिल भाषा में प्रार्थना किया। इसके बाद भगवान शंकर ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद अग्नि शांत हो गई।
अग्नि देव ने कहा कि मैं तो शांत हो गया, परंतु आप मुझे स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। सुंदर स्वामी ने कहा कि तुम्हें जिसने भेजा तुम उसी के पास जाओ, इस देश का राजा सुंदर पांडे तुम उसके पास जाओ, वही तुझे शरण देगा। वही अग्नि पुनः वापस पांड्य देश के राजा के पास आई और सुंदर पांडे को जलाने लगी। बेचारा जो है मूर्छित पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, झाड़ फूक की, वह ठीक ही न हो, परेशान। सारी नब्ज देखी, बोले कोई बीमारी नहीं इनको है, बस शाम तक हम लोग ठीक कर देंगे अपने तंत्र मंत्र से, पर कोई फायदा न हुआ। अंत में उसमें से एक नास्तिक ने कहा, इस राज्य में लगता है कोई सही भक्त आ गया है, उसी के प्रभाव से ये जो है राजा का ज्वर बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है, उसको देश से निकाला जाए। मंत्री ने कहा, तुम तो झाड़ फूक करके थक गए, तुम्हारी दवाई भी सारी समाप्त हो गई, कोई नहीं काम किया, और उल्टे तुम बोले कि शिव भक्त को देश से निकालो तब शांत होगा। जब शिव भक्त को बुलाया गया, अच्छे आसन पर बैठाया, बैठते जैसे उन्होंने भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया, तत्काल ज्वर शांत हो गया, राजा उठकर बैठ गए। राजा ने कहा कि किसने मेरा संताप मिटाया है? मंत्री ने कहा कि शिव भक्त है, इनके मंत्र से आपका ज्वर शांत हुआ है। राजा ने कहा, ये नास्तिक लोग जो इतना बोल रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं ठीक किया? वे बोले कि राजन, इस समय दैव गति विपरीत चल रही है, इसलिए आप हम पर नाराज न होइए और आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि कौन मत श्रेष्ठ है, कौन मत श्रेष्ठ नहीं है, इसका नियामक तो शास्त्रार्थ है। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, परंतु शास्त्रार्थ में किसी का मत निर्णित नहीं हो पाया। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं एक कागज लिखकर अग्नि में डालता हूं, और जिसके मत का कागज जल जाए वह समझो कि हारा गया। राजा ने एक उनके मत सिद्धांत के अनुसार पत्र लिखवाया, दूसरा शिव भक्तों के द्वारा। जैसे ही उसकी उनके कागज को अग्नि में डाला, तुरंत जलकर राख हो गया। जब सुंदर स्वामी के पत्र को डाला तो बिल्कुल वैसे पत्र जस का तस रहा, नहीं जला। नास्तिकों ने कहा, ये राज्यसभा है, राज्यसभा में हो सकता कोई दोष हो, और आपके दोष से ये अग्नि जो है ना हमारे कागज को जला डाली, इसलिए हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते, स्वीकार कर दिया। राजा ने कहा कि जब आप इतने बड़े प्रमाण को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तब तुम लोग ही बताओ कि मैं कौन सा प्रमाण पेश करूं। नास्तिक ने कहा कि राज से बाहर चलिए और बेगवती नदी में अपने अपने सिद्धांत के कागज को डाला जाए, जिसका कागज नदी के उल्टी दिशा में प्रवाहित हो वह मत श्रेष्ठ, और जिसका कागज डूब जाए वह मत कनिष्ठ। पर राजा ने कहा, क्या पता तुमने इसमें बेईमानी कर डालो, इसलिए पक्की शर्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि जो पराजित होगा उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे। जब ऐसा शर्त रखा, शर्त रखकर दोनों कागज मंगाया, दोनों के सिद्धांतों का, जैसे नास्तिकों के कागज को डाला वह तो जल में डूब गया, मछलियों ने खा लिया। जैसे सुंदर स्वामी के ओम नमः शिवाय मंत्रों से लिखित सिद्धांत को डाला, वह कागज जो है नदी की धारा के विपरीत चलने लगा। सारे नास्तिक पराजित हुए, उनको राजा ने सूली पर चढ़वाया, और कुछ तो डर के मारे राज्य को छोड़कर भग गए। तो सुंदर स्वामी भगवान शंकर के चरणों को उपासना से, ये कलयुग की कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है, दक्षिण भारत में ये कमलालय क्षेत्र की प्रसिद्ध, ये तमिल भाषा में ये तो अंकित है, हिंदी में नहीं है, शिवभक्त चरित्र में इस संकेत में लिखा हुआ मिलता है।
तो भगवान शंकर की उपासना से जो भाव